पद हर प्रवान, सर्व त्याग फल केवल राम। गौड़ी कबीर जी, नगन फिरत जाओ पाई है जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग, क्या नांगे क्या बाधे चाम। जब नहीं चीन सयात्म राम, हरहाओ मूड मुडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गई आकाई। बिंद राग जाओ तरिये पाई, खुसरे क्यों ना परमगत पाई, कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बेन किन गद पाई। गौड़ी कबीर जी, संध्या प्रात स्नान कराही, ज्यों पै दादर पानी माही, जाओ पै राम राम रत नाही, के सब धर्म राय कै जाही रहाओ। काया रत बहु रूपर चाही, तिन को दया सुपने पी नाही, चार चरण कह बहु अगर, साधु सुपावे कर सागर। कहो कबीर बहु काय करी जय, सर्व छोट

अब मोह मिलियो है जिया मनहारा रहाओ। या देखी परमल महकंदा तासुक बिसरे परमानंदा, कूटा एक पंच पनहारी टूटी लाज परे मत सारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ कुवटा ना पनहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे काल हम बहुत बसाए, जब हम आराम गर्भ हो आए रघाव। योगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा शत्रपत कबहू पेघारी। सागत मरे संत सब जीव, राम रसायन

कद कथ अंत न पाया, राम भगत बैठे कर आया। कहो कबीर चंचल मद त्यागी, केवल राम भगत निज पागी। गौड़ी कबीर जी जे मरने सब जगत तरासया, तो मरना गुर शब्द प्रगासया। अब कैसे मरो मरन मन मानिया, मर मर जाते जिन राम न जानिया। रहाओ मरनो मरन कहे सब कोई, सहजे मरे अमर होए सोई। कहो कबीर मन पया अनंत।

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन पावे रहाओ। जे कड़ राम रहया भरपूर, तिन की पाग

गगन साल चोवे मेरी पाठी, सांच महारस तन पया काठी, होआ को कहिए सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बीचारा, रहाओ सहज कलालन जो मिल आई।

कहे तो कबीर पले असवारा, बेर कतेबते रहे निरारा, गौड़ी कबीर जी। जे मुख पांचो अमृत खाए, ते मुख देखत लूप टलाए, एक दुख राम राय काटो मेरा, अग्न दह अर गर्भ बसेरा, रहाओ काया विभूति बहुविध पाती।

पौड़ी ग्वारेरी अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुखमो न मांगया पावे दिखया अजो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाओ इस सुखते से ब्रह्म डराना सो सुखमो साज कर जाना संकादक नारद मुन सेखा तिन पीतन में मन नहीं पेखा इस मन को कोई खोजो पाई ता छूटे मन कहां सुमाई गुर प्रसादी जय दो नामा भगत के प्रेम इन ही है जाना इस मन को नहीं आमन जाना जिसका परम गया तिन साज पछाना इस मन को रूप न रेख्या काई हुक्मे होया हुक्म बूझ सुमाई इस मन का कोई जाने पेओ ए मन लीन पय सुख देओ जियो एक हर सगल शरीरा इस मन को रव रहे कबीरा गौड़ी ग्वारेरी आहे निस एक नाम जो जागे केतक सिद्ध पय लिव लागे रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे एक नाम कल्प तरतारे जो हर हरे सो होए न आना कहे कबीर राम ना पछाना गौड़ी पी सोठ पी रे जी न लज लाज तोय नाही हर ताज कद काहू के जाही रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जन पर कर जातन सोही सो साहेब रहा पर पूर सदा संग नाही घर दूर।

साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छिड़ाए, अमृत नाम जपो जब रसना, अमोल दास कर लीनो अपना, सतगुर कीनो पर पुकार, काढ लीन सागर संसार, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गोविंद बसे निता नदचीत, माया तप्त बुझिया अंगयार, मन संतोख नाम आधार, जल थल पूर रहे प्रस्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही दरड़ाई, पूर्व लिखत मिलिया मेरे पाई, जिस कृपा करे तिस पूर्ण साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज, जल के सूतक थल के सूतक, सूतक ओपत होई, जन्मे सूतक मुगे फुन सूतक, सूतक परज बगोई, कौरे पंडिया कौन पवीता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता रघाओ, नयनो सूतक बयनो सूतक, सूतक श्रमणी होई, उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परे रसोई, फासन की बेद साव को जाने, छूटन की एक कोई, कहे कबीर आराम हृदय बेचारे, सूतक तिने न होई गौड़ी, झगड़ा एक न बेर हो राम, जो तुम अपने जन सो काम, रहाओ यो मन बड़ा के जासो मन मानिया, राम बड़ा कह रामे जानिया, ब्रह्मा बड़ा के जास उपाया, वेद बड़ा के जाते आया, कहे कबीर हो पया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास, अराग गौड़ी चेती देखो पाई, ज्ञान की आई आंधी, सवे उड़ानी प्रम की टाटी, रहे ना माया बांधी, रहाओ दुचित्ते की दो थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, तिसना शान परी तारी ऊपर, दुर्मद पांडा फूटा, आंधी पाचे जो जल बरख, ते तेरा जन पीना, कहे कबीर मन पया परगासा, उदय पान जब चीना, गौड़ी चेती एक ओंकार, सदगुर प्रसाद हर जस सुने, न हर गुण गावे।

इस माटी में पमन समाया, झूठा प्रपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी, कहे कबीर एक नीव सारी, खिन में बिनस जाए अंकारी गौड़ी। राम जपो जी ऐसे ऐसे, त्रू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, दीन दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, रहाओ जत पावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चुग गई फिर आमन जानी, कहो कबीर भज सारंग पानी, उरवार पार्षद एको दानी, गौड़ी नावी जोन छाड़ जो जग में आयो, लागत पवन खसुम बिसरायो, जियरा

का और गाओ गर्भ जोंग में उर तब करता तो जठर अग्नमय रक्त लगत उरासी जोन प्रमे आयो अब के शुटके ठौर नट आयो कहो कबीर पर सार्ग पानी आर्त जिसे जात न जानी गौड़ी पूर्वी सुर्गवास ना बाची है डरके नरक निवास होना है सो होई है मने न की जे आस रमैया गुण गाइये जाते पाइये परमन धान रखाओ क्या जप क्या तव संजमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जूत न जानिए पाओ भगत भगवान संपै देख न हरखिए बिपत देख न रोए जो संपै त्यो बिपत है बिद ने रचिया सो होए कहे कबीर अब जानिया संतन हृदय मजार सेवक सो सेवा पले जे कड़ बसे मुरार गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार बिरख बसेरो पंख को तैसो यो संसार राम रस पिया रे जे रस बिसर गए रस और रखाओ और मुए क्या रोई है जो आपा थिर ना रहाए जो उपजे सो बिनस है तो का रोवे बलाए जय की उपजी तैरची पीवत मर्दन लाग तय कबीर किद चेतया आराम सिमर बैराग राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी लोचन परी ले उसासा और ना पीजे पग ना खिसे हर दर्शन की आसा उड़ो ना कागा कारे बेग मलीजे अपने राम प्यारे रहो कहे कबीर जीवन पद कारण हर की पगत करीजे एक आधार नाम नारायण रसना राम रवीजे राग गौड़ी ग्यारहवीं आस पास कण तुरसी का बिरवा माज बनार सुगाऊं रे हुआ का स्वरूप देख मुई ग्वारन मोको छोड़ न आऊ न जाहू रे तुहे चरण मन लागो सारंग तार सो मिले जो बड़ भागो रघाओ बिंद्राबान महरन मनोर कृष्ण चिरावत गाऊ रे जाका ठाकुर तुही सारंग तार मोहे कबीरा नाऊ रे गौड़ी पूर्वी बारहवीं बिपल बस्तर केते है पैरे क्या मन बदे बस कहा पया नर देवा धोखे क्या जल बोरो ज्ञाता जी रे जाएगा मैं जाना आगत समझ ए आना जब जब देखो बौर ना पेखो संग माया लपटाना रघाओ ज्ञानी त्यानी ब उपदेसी यो जग सुग लो तंडा कहे कबीर एक राम नाम बेन या जग माया अंधा गौड़ी बारहवीं मारे छाडो परम पट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सनमुख रन ते डर पे सती के सांचे फांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सिद पाइये लीनो हाथ सुंधौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने या बिर जगत बिगूता कहे कबीर राजा राम न छोड़ो सगल ऊंच ते ऊंचा गौड़ी तेरवी फुरमान तेरा सिरे ऊपर फिर न करत विचार तुही दरिया तुही करिया तुझे ते निस्तार बंदे बंदगी एक तैयार साहेब रोस तरो के प्यार रहो नाम तेरा आधार मेरा जो फूल जई है नार कहे कबीर गुलाम कर का जियाए पावे मार गौड़ी लग चौरासी जी जोन में प्रमत नंद बोथा कोरे भगत हेत अवतार लियो होए भाग बड़ो बपरा कोरे तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सो नंदन का कोरे तरन आकाश दसो दस नाही तब यो नंद कहां थोरे रहाओ संकट नहीं परे जोन नहीं आवे नाम निरंजन जा कोरे कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर जा के माई ना बापोरे गौड़ी

भगत आरंभ काया मंदर मनसा थंभ अहिर अखंड सो रही जाए तो अनहद बेण सहज मय बाय सोमवार सज अमृत चर त्यागत बेग सगल बिखर।

सो को ना कह समझाए जाते आवा गम बिलाए रहाओ बहुत धर्म न रूपी है करता दिसे सब लोए कम कर्म ते छूटी है जे साधे सब सिद्ध होए कर्म अकर्म बिचारी है संका सुन वेद पुराण संसा साध हृदय बसे कौन घेरे अवमान बार उदक पखारिये कर पीतर बेबद बेकार सुध कमन पर होए बो सुज कुंचर बेद व्यवहार राव प्रगास रजनी जसा गत जांत सब संसार पारस मानो तांबो छोए कनक होत नहीं बार परम परस गुर पेटीए पूर्व लिखत ललाट उन मन मान मन की मिले छुटकत बज्र कपाट भगत जुगत मत सत करी प्रबंधन काट बेकार सोई बस रस मन मिले गुर निर्गुण एक विचार अनक जतन निग्रह किए तारी न टरे परम फास प्रेम भगत नहीं उपजे ता ते रविदास उदास एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह पंग गुर प्रसाद राग आस महला पहला कर पहला सोदर सोदर तेरा केह सो कर केह जित बै सर्व संभाले वाजे तेरे नाद अनेक संख।

आत्मता गलमत्ता जो कुछ बोलिए सब खतो खता क्या मोल है कीते अरदास पाप पुंद साखी पास जैसा तू करे तैसा को होए कुछ दिन दूजा ना ही कोए जेही तू मत देहे तेही को पावे तुझे आपे पावे तेवे चिलावे राग रतन परियां परवार तेस विच उपजे अमृत सार नानक करते का यो तनमाल जे को बुझे यो विचार आसा मोहल्ला पहला कर कृपा अपने कर आया ता मन सगियां काज रचाया खेल देख मन अंध पाया सहो भी आने आया गावो गावो कामणी बबेक विचार हमरे कर आया जग

मन वसे आए, नदर करे ता सदगुर मिले, परमत नानक पहुंचल तर। आसा मोहल्ला पहला पंच बदे, दुध बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उदबुज कामना ही। क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही। की विसरे दुख बहुता लागे, दुख लागे तू विसर नाही। हरहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पौन ना वाजे, चरणी चले पजूता आगे, विन सेवा फल लागे। अखर देख बाग पे चोखी, सिंचित पाओ करेगी, सब ना फल लागे नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेगी। जेते जी तेते सब तेरे, विन सेवा फल किसे नाही। दुख सुख पाना तेरा होवे, विन नावे जियो रहे नाही। मत विच मरण जीवन होर कैसा, जा जीवा ता जूत नाही। कहे नानक जीवाले जिया, जय पावे है राख तुही। आसा महला पहला काया, ब्रह्मा मन है तोती, ज्ञान जनेऊ ध्यान कुछ पाती। हर नामा जाजा चौनाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामो पढ़ो, नामे चज आचार रखाओ। बार जनेऊ जिचर जोत है नाल, धोती टिक्का नाम सुमाल। ऐथे उथे निभगी नाल, विण नावे होर कर्म ना पाल। पूजा प्रेम माया परजाल, एको वेखो अवर न पाल। इन्ने तत् गगन दा द्वार, हर मुख पाड़ पड़े विचार। भोजन पाओ परम पाओ भागे, पारू रश विचोर न लागे। तिलक ललाट जाने प्रावेक, बूझे ब्रह्म अंतर बवेक। आचारी नहीं जीत्या जाए, पाड़ पड़े नहीं कीमत पाए। अष्टदशी चौपेद न पाया, नानक सदगुर ब्रह्म दिखाया। आसा महला पहला सेवक दास, भगत जन सोई। ठाकुर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फुन गोई। तिस बिन दूजा अवर ना कोई, साच

सच्चे तख्त बुलावे सोए, देवड़ियाई करे सो होए, तेरा तान तू है दी बाण, गुर का शब्द सच निशान, मन ने हुक्म सो प्रगट जाए, सच निशाने ठाक न पाए, पंडर पढ़े वखाने वेद, अंतर अवस्त न जाने भेद, गुरबिन सूझी बूझ न होए, साचा रवर या प्रसोए, क्या हो अख अख वखाणी, तू आपे जाने सर्व वडाणी, नानक एको दर दी बाण, गुरमुख साजता गुजराण, आसा महला पहला, काची गागर दे दुखेली, उपजे बिनसे दुख पाई, यो जग सागर दुत्र क्यों तरीये, बिन हर गुर पार न पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे, तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सर्बी रंगी रूपी तू है, तेस बगसे जिसे नदर करे रखाओ, सास बुरी कर वास न देवे, फिर स्यों मिलन ना दे बुरी, सखी सजनी केखो चरण सरेव, हर गुर कृपा ते नदर तरी, आ विचार मार मन देखया, तुम समीत न अवर कोई, ज्यों तू रख तिबगी रहना, दो सुख देवे करे सोई, आसा मनसा दो बिनास्त, त्रयो गुण आस निरास पई, तुरी अवस्था गुरमुख पाई है, संत सभा की ओट लगी, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप, जिस हर हृदय अलख पेव, नानक राम नाम मन रत, गुरमत पाए सहज सेवा, आसा महला पहला, पंच पदे मोह कुटुंब मोह सवकार, मोह तुम तजो सगल वेकार, मोह अर परम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवे शरीर, रहाओ सच नाम जा नवन दपाई, रोवे पूतना कल पैमाई, एत मुए डूबा संसार, गुरम कोई उतरे पार, एत मुए फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जम पुर जाहे, गुर दिखिया ले जब तब कुमागे, ना मो टूटे न थाए पाए, नदर करे ता यो मो जाए, नानक हर्षों रह सुमाए, आसा महला पहला, आप करे सच अलख पार, हो पापी तू बख्शन हार, तेरा पाना सब किश होवे, मन हड़ कीते अंत गोवे रखाओ, मन मुकी मत कूड़ में आपी, बिन ख सिमरन पाव संतापी, दुर्म त्याग ला किश लेवो, जो उपजे सो अलख पेवो, ऐसा हमारा सखा सखाई, गुर घर मिलया पगत दृढ़ाई, सगली संधी तोटा आवे, नानक राम नाम मन पावे, आसा महला पहला चौप दे, विद्या विचारी ता पर पुकारी, जा पंच रासी ता तीर्थ वासी, घुंगरू वाजे जे मन लागे, तौ जम कहां करे, मोस आगे रहाओ, आसन रासी तौ सुनियासी, जा जय जोगी ता काया भोगी, दया दिगंबर दे विचारी, आप मरे अवरा नय मारी, एक तू होर वेस बो तेरे, नानक जाने चोज न तेरे, आसा महला पहला, एक न परियां गुण कर तोवा, मेरा सो जाग हो निस पर सोवा, यों क्यों कंत प्यारी होवा, सो जाग हो निस पर सोवा, रहाओ आस प्यासी से जे आवा, आगे से पावा के न पावा, क्या जानना क्या होए गारी माई, हर दर्शन बिन रहन ना जाई, रहाओ प्रेम ना चाखिया मेरी तिसना बुझानी, गैसो जोगन तन पछतानी, अस जागो आस प्यासी, पहले उदासी रहो निरासी, रहाओ हो मैं खोए करी सी गार, तो कामन सेजे रवे पतार, तो नानक कंते मन पावे, छोड़ वड़ाई अपने खदम सुमावे, रहाओ आसा महला पहला, पेव कड़े तन खरी इयानी, ते सैकी में सार न जानी, सौ मेरा एक दूजा नहीं कोई, नदर करे मेलावा होई, रहाओ सौ रड़े तन साज पछाणिया, सह सुपाए अपना फिर जानिया।

तू सब नाका सोई, जे सकता सकते को मारे ता मन रोस न होई। हरहाओ सकता सियो मारे पै वगे, खसमे सा पुरसाई, रतन विगाड़ भगोए कुत्ती, मोया सार नकाई। आपे जोड़ छोड़े आपे, वेख तेरी वड्याई, जे को नाव तराए वड्डा, साध करे मन पाणे। खसमे नदरी कीड़ा आवे, जेते चुगे दाने, मर मर जीवे ता किश पाए, नानक नाम खाने। अराग आसा कर दूजा, महला तीजा, एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, हर दर्शन पावे वडपाग, गुर के शब्द सच्चे बैराग, खड़ दर्शन वरते वरतार, गुर का दर्शन अगमे पार, गुर के दर्शन मुक्त गद होए, साचा आप वसे मन सोए। रहाओ गुर दर्शन उदरे संसारा, जे को लाए पाओ प्यारा, पाओ प्यारा लाए विरला कोए, गुर के दर्शन सदा सुखोए, गुर के दर्शन मुख द्वार, सदगुर सेवे प्रवास आधार, निगुरे कौ गद काई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर के शब्द सुख सांत शरीर, गुरमुख ताको लगे ना पीर, जम काल नेड़ न आवे, नानक गुरमुख साज सुमावे। आसा महला तीजा, शब्द मुआ विचू आप गवाए, सदगुर सेवे तिल ना तुमाए, निरपो दाता सदा मन होए, सती बाणी पाए पाग कोए, गुण संग्रह विचू अवगुण जागे, पूरे गुर के शब्द समाहे। रहाओ गुणा का गाहक होवे, सो गुण जाने, अमृत शब्द नाम खाने, साची बाणी सुचा होए, गुण ते नाम प्राप्त होए, गुण अमोलक पाए ना जागे, मन निर्मल साचे शब्द समागे, सेवड़ भागी जिन नाम ते आया, सदा गुणदाता मन वसाया, जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाओ, दर साचे साचे गुण गाओ, आपे देवे सहे सुपाए, नानक कीमत कहण न जाए। आसा महला तीजा, सतगुर विच वड्डी वड्याई, तिरी मुशुन्ने मेल मिलाई, आपे मेले मेल मिलाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर की कीमत केन विद होए, हर अपरंपर अगम अगोचर, गुर के शब्द मिले जन कोए। रहाओ गुरमुख कीमत जाने कोए, विरले कर्म प्राप्त होए, ऊची बाणी ऊचा होए, गुरमुख शब्द बखाने कोए, विण नावे दुख दर्द शरीर, सागुर पेटे ता उतरे पीर, बिन गुर पेटे दुख कमाए, मनमुख बहुती मिले सजाए, हर का नाम मीठा अतरस होए, पीवत रह पियाए सोए, गुर कृपा ते हर रस पाए, नानक नाम रते गद पाए। आसा महला तीजा, मेरा प्रसाचा गहर गंभीर, सेवत ही सुसां शरीर, शब्द तरे जन सह सुपाए, तिन के हम सद लागे पाए, जो मन राते हर रंग लाए, तिन का जन्म मरण दुख लाता, ते हर दरगे मिले सुपाए। रहाओ शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर पर सदा रहा भरपूर, आपे नेड़े आपे दूर, आखने आखे बके सब कोए, आपे भविष मिलाए सोए, कहने कथन न पाया जाए, गुर प्रसाद वसे मन आए, गुरमुख विचू आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सुवार नहार। आसा महला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया, सदगुर सेवे सोजी होए, दूजे पाए न लागे कोए, मूल लागे सृजन प्रमाण, अन दिन राम नाम जब हिरदे, कुर शब्दी घर एको जान। रखाओ डाली लागे ने फल जाए, अंधी कमी अंध सजाए, मनमुख अंधा ठौर न पाए, दिष्टा का कीड़ा दिष्टा माए पचाए, गुर की सेवा सदा सुपाए, संत संगत मेल हर गुण गाए, नामे नाम करे विचार, आप तरे कुल उदरन हार, गुर की बाणी नाम जाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया।
ਦੁਰਮਤ ਮਾਇਲ ਸਭ ਦੁਰਤ ਗਵਾਇਆ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਨਮੁਖ ਮਰੇ ਮਰ ਮਨਨ ਵਿਗਾੜੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਆਤਮ ਸੰਘਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਕਰ ਵਿਗੂਤਾ, ਆਤਮ ਨਾ ਚੀਨੈ ਪਰਮੇ ਵਿਚ ਸੂਤਾ, ਮਰ ਮੋਇਆ ਸਭ ਦੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਸਤ ਨਿੰਦਾ ਗੁਰ ਸਮਝਾਣ ਆਈ, ਇਹ ਯੁਗ ਮੈਂ ਲਹਾ ਹਰ ਜਪ ਲੈ ਜਾਏ, ਰਹਾਓ ਨਾ ਵਿਹੂਣ ਗਰਭ ਗਲ ਜਾਏ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਦੂਜੇ ਲੋਭਾਏ, ਨਾ ਵਿਹੂਣੀ ਦੁਖ ਜਲੇ ਸਬਾਈ, ਸੋ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਬਹੁ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ, ਇਥੋਂ ਛੁਟਕਿਆ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ, ਗਰਭ ਜੋਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਵਾਸ, ਇਤ ਕਰ ਮਨ ਮੁਖ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦਾ ਬਲ ਜਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਿਰਕਰ ਵਾਸਾ, ਨਾਨਕ ਹੋਮੇ ਮਾਰੇ ਸਦਾ ਉਦਾਸਾ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਲਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਗੁਵਾਈ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਸੁਖਾਈ, ਥੋ ਲਾਲਾ ਜੀਵਤ ਮਰੇ, ਸੋ ਹਰਖ ਦੋਇ ਸਮਕਰ ਜਾਣੇ,

को आया वस्त अनूप सुनी लाभाया गुण रास बन पल्ले आनी देख रतन ओ मन लपटानी सह व्यापारी द्वारे आए वखर काढ़ो सौदा कराए रहाओ सहे पठाया सहे पास अमोल रतन अमोला रास विट सुभा।

रूप सब सुख बने सुहागन अति सुंदर बचखन तू रहाओ दूजा आसा मोहल्ला पंजवा एक तुके दो जीव दीस ते सर पर मरना मुआ होए तिस निचल रहना जीवत मुए मुए से जीवे हर हर नाम अब खुद मुख पाया गुर सब

जल नहीं डूबे संग छोड़ कर कतो ना जाई हरहाओ तोट ना आवे निखुट ना जाए खाए खर्च मन रह अघाय सो सच साहो जिस कर हर तन संचाना इस तन ते सब जग बरसाना तिन हर तन पाया जिस पुरब लखे का लेना जन नानक अंतवार नाम गहना आसा मोहल्ला पंजवा जैसे किसान बोवे किसानी काची पाकी बाढ़ परानी जो जन्मे तो जन हो मुआ गोविंद भगत अस्तर है थिया रहाओ जिनते सर पर पौसी रात रहन गई फिर होए प्रभात माया मोहे तो रहे अपागे गुर प्रसाद को विरला जागे कहो नानक गुण गई है नीत मुख उज्जल हो निर्मल चीत आसा महला पंजवा नौनद तेरे सग

उन संकाम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्त अगावे हर दर्शन मन मोरा हरहाओ पवित्र भंडार गुरबाणी लाल गावत सुन।

मन सदा आनंद आन सामे व्यापे चिंद हर्ष पीवे आल मस्त मतवारा आन सा सब होशे रे रहाओ हर रस की कीमत कही न जाए हर रस साधु वार समाए लाख करोरी मिले ना केह जिसे प्राप्त तिसरी देह नानक चाह पै विस्माद नानक गुरते आया साध ईत ऊत अब छोड़ न जाए नानक गीदा हर रस माहे आसा महला पंजवा काम क्रोध लो मोह मिटावे छुटके दुरमते अपनी तारी होए निमाणी सेव कमावे ता प्रीतम होवे मन प्यारी सुन सुंदर साधु बचन उधारी दुख भूख मिटे तुर सहसा सुख पावे तू सुख मन नारी अरहाओ चरण पखार करो गुरसेवा आत्म शुद्ध बिख त्यास निवारी दासन की होए दास दासरी ता पावे शोभा घर द्वारी यही आचार यही व्यवहारा आज्ञा मान भगत होए तुम्हारी।

पुर पूरे अंध भया सा मिटे रसूरे हराओ जी जंत सगल सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन त्याया आसा महला पंजवा बाशत नाही सो बेला आई बिन हुक्मे क्यों बुझे बुझाई ठंडी ताती मिट्टी खाई ओ ना बाला बूढ़ा पाई हराओ नानक दास सा शरणाई गुर प्रसाद को पार पराई आसा महला पंजवा सदा सदा आत्म परगास साध संगत हर चरण निवास राम नाम नित जप मन मेरे शीतल सांत सदा सुख पावे एलबक जाहे सबे मन तेरे रहाओ कहो नानक जाके।

साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा मोहल्ला पंजवा, काम क्रोध माया मद मस्तर, ए खेलत सब जुए गारे। सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने ग्रह पीतर वारे। जन्म मरण चूके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल। गुर पूरे लेखिन में तारे, रहाओ सबकी रेन होए रे मनुआ। सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्ये रव्या मेरा ठाकुर। दान देत सब जी सम्हारे, एको एक आप एक एक, एक कहे सगला पासारे। जप जप होए सगल साल जन, एक नाम तय बहुत उधारे। गैर गंभीर बेंत गुसाई, अंत नहीं किश पारा वारे। तुमरी कृपा ते गुण गावे, नानक त्याय तय प्रभु को नम।

पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े कर्म धर्म जुगत बो करता करणे हार न जाने उपदेश करे आप ना कमावे तत् शब्द ना पछाने नांगा आया ना गोजासी ज्यो हस्ती खाक शाने संत सज्जन सुनो सामीता झूठा इओ पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खाब खा मोए गवारा।

लागे साधु, नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग, वडभागे कृपा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद राग आसा कार सेवा महला पंजवा। जो तुद पावे सो परवाना, सुग सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा।

नहीं दर गए टोई, जम पुर जाए पचावे, निंदक अहला जन्म गवाया, पहुँच न सके काहू बाते, आगे ठौर न पाया, रहाओ किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा, तहां बेगूता ते कोई न रखे, ओ किस पे करे पुकारा, निंदकी गत तथु नागी, खसमे ए वे पाणा, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना, संता टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सगाई, कहो नानक संत खरा राखे, निंदक दिए रुढ़ाई, आसा मोहल्ला पंजवा, बाहर तोय अंतर मल मैला, दोए ठौर अपने खोए, ईहां काम क्रोध मुए व्यापया, आगे मुस मुसरोए, गोंद पजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप न मरी, नाम न स्वयं डोरा, रहाओ माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्र को तर्कन लागा, तत् योग ना पछाने, उगर गया जैसे खोटा टबुआ, नदर सरापा आया, अंतरजामी सब के जाने, उसते कहां छुपाया, कूड़ कपट बंच ने मुनियादा, बिनस गया तद काले, सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले, आसा महला पंजवा, उदम करत होवे मन निर्मल, नाचे आप निवारे, पंच जनाले वस गद रख, मन में एक अंकारे, तेरा जान निरत करे गुण गावे, रबाब पखावज ताल कुंगुरु, अनगद शब्द वजावे रखाओ, प्रथमे मन पर बोध अपना, पाछे अवर दी जावे, राम नाम जप हृदय जप, मुक्ते सगल सुनावे, पर संग साधु चरण पखारे, संत तूर तन लावे, मन तन अर्प तरे गुर आगे, सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पेखे लै सरदा, ताका जन्म मरण दुख पागे, ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे, आसा महला पंजवा, अदम चंडाली पई ब्रह्मणी, सूदी ते सृष्टाई रे, पाताली आकाशी सखनी, लैबर बूजी खाई रे, घर की बलाई अबर सखाई, मूसा देख डराई रे, अज के वसगुर कीनो केहर, कुकर तने लगाई रे, रहाओ बाज थूनिया छपरा थामिया, नी करया कर पाया रे, बिन जड़िए ले जड़े उजड़ावा, हेवा अचरज लाया रे, दादी दाद ना पहुंचन हारा, टूपी निरनो पाया रे, मार दुलीचे बैठी ले मृतक, नयन दखालन ताया रे, सोई अजान कहे मैं जाना, जानन हार नशाना रे, कहो नानक गुर अम्यो पी आया, रसक रसक बिरसाना रे, आसा महला पंजवा, बंधन काट बसारे औगुण, अपना बिरध संहारिया, होए कृपाल माध पित न्याई, बारग ज्यों प्रद पारिया, गुरसिख राखे गुर गोपाल, काढ़ लिए महापवजल ते, अपनी नजर निहाल रखाओ, जाके सिमरन जम ते छुटिए, हलत पलत सुख पाईए, साध गराज जपो जप रसना, नीत नीत गुण गाईए, भगत प्रेम परम पद पाया, साल संग दुख नाठे, छिजे न जाए ही पौ ना व्यापे, हर तन निर्मल गाठे, अंतकाल प्रपय सहाई, एत उतरा कनहारे, प्राण मीत हीर तन मेरे, नानक सब बलिहारे, आसा महला पंजवा, जा तू साहेब ता पौ केहा, हों तू बिन के साल आही, एक तू ता सब किश है,

जाने बिरथा सभा मन की, और किस पे आग सुनाइए। दिन नावे सज पौराया, नाम मिले सुख पाईए। क्या कहिए किस आग सुनाइए, जे कहना सो प्रभु जी पास। सब कुछ कीता तेरा वर्त, सदा सदा तेरी आस। जे दे वडियाई ता तेरी वडियाई, एत उत तुझे ते आओ। नानक के प्रसदा सुखदाते, मैं तान तेरा एक नाओ। आसा महला पंजवा, अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर। इहो महारस जने पियो, जन्म जन्म टूके पै पारे। दुर्त बिनासियो परम बियो, दर्शन पेखत मैं जियो। सुनकर भजन तुम्हारे सतगुर, मंत्र मेरा ठार थियो। रहाओ तुमरी कृपा ते पयो साध संग, यो काय तुम आप कियो। दृढ़ कर चरण गए प्रतुमरे, हैजे विखिया पई कियो। सुख निधान नाम प्रतुमरा, यो अविनाशी मंत्र लियो। कर कृपा में सतगुर दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो। तन सो मानस देही पाई, जित प्रभ अपने मेर लियो। तन सो कलयुग साध संकीर्तन गाईए, नानक नाम आधार हीओ। आसा महला पंजवा, आगे ही ते सब किछ हुआ। अवर के जाने ज्ञाना, पूर चूक अपना बार्ग बख्शिया। पार ब्रह्म भगवाना, सतगुर मेरा सदा दयाला। मोहे दीन को राख लिया, काटिया रोग मास उपाया। हर अमृत मुख नाम दिया, रहाओ अनक पाप मेरे पर हरिया। बंधन काटे मुक्त पए, अंध कूप महा कोरते। बहा पकर गुर काढ़ लिए, निरपो पए सगल पो मिटिया। राखे रखन हारे, ऐसी दात तेरी प्रा मेरे। कार्ज सगल सवारे, गुण निधान साहेब मन मेला। शरण पया नानक सोहेला, आसा महला पंजवा। तू विसरे ता सब को लागू, कीत आवे ता सेवा। अवर न को दूजा सूजे, साचे अलख अपेवा।

नरक स्वर्ग फिर अवतार गृहस्थ में चिंत उदास अंकार कर्म करत जी को जंजार प्रभु कृपा ते मन वसाय नानक गुरमुख तरी तिन माया साध संघर कीर्तन गाइए ये स्थान गुरु ते पाईए रहाओ दूजा आसा महला पंजवा घर में सुख बार फन सूखा हर सिमरत सगल बिना से दुखा सगल सुख जा तू चित आवे सो नाम जपे जो जन तुपावे रखाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत तहे दुख डेरा हुक्म बूझे सोई परवान साज शब्द जाका निशान गुर पूरे हर नाम दिरड़ाया पंत नानक मेरे मन सुख पाया आसा महला पंजवा जहां पठावो तह ते जाई जो तुम देहो सोई सुख पाई सदा तेरे गोविंद गुसाई तुमरी कृपा ते तृप्त अघाई रहाओ तुमरा दिया पै नोखाई तौ प्रसाद

तोई जो प्राणी काऊ न आवत काम संत प्रसाद ताको जपिए नाम साध संग मन सोवत जागे ता प्रभु नानक मीठे लागे आसा महला पंजवा एको एकी न निहारो सदा सदा हर नाम सुमारो राम रामा रामा गुण गावो संत प्रसाद साध के संगे हर हर नाम त्यावो रे अरहाओ सगल समगरी जाके सूद परोई कड़कड़ अंतर रव्या सोई ओबद परलो खिन में करता आप लेप निर्गुण रहता करन करावन अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी आसा महला पंजवा।

गुरपूरे के चरण गए, कोड जन्म के पाप लहे, रतन जन्म यो सबल पया, कहो नानक प्रभु करी मया, आसा महला पंजवा। सतगुर अपना साध सदा सुमारे, गुर के चरण के संग चारे, जाग रे मन जागन हारे, बिन हर अवर न आवस कामा, झूठा मोह मिथ्या पसारे, रहाओ गुर की बाणी सो रंग लाए, गुर किरपाल होए दुख जाए, गुर बिन दूजा ना गीताओ, गुरदाता गुर देवे नाओ, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप, आठ पैर नानक गुर जाप, आसा महला पंजवा। आपे पेड़ विस्तारी साख, अपने खेती आपे राख, जद कद पेखो एक है ओगी, कड़कड़ अंतर आपे सोई, रहाओ आपे सूर किरण विस्तार, सोई गुप्त सोई आकार, सरगुण निर्गुण थापे नाव, दो मिल एक है की नो ठाव, कहो नानक गुर ब्रह्म पौ खोया, अंध रूप सब नयन अलोया, आसा महला पंजवा। उगत सियानप किशु ना जाना, दिन रहन तेरा नाम खाना, मैं निर्गुण गुण ना ही कोय, तरन करावन हार प्रसोय, रहाव मूर्ख मुगध अज्ञान विचारी, नाम तेरे की आस मन तारी, जब तब संजम तर्म ना साधा, ना प्रभु का मने अराधा, किशु ना जाना मत मेरी तोरी, बिनवत नानक ओड प्रातोरी, आसा महला पंजवा। हर हर अखर दोए ए माला, जबत जबत पै दीन दयाला, करो बेनती सदगुरे अपनी, कर किरपा रखो शरणाई, मोको देव हरे हर जपनी, रहाओ हर माला और अंतर तारे, जन्म मरण का दुख निवारे, हृदय संभाले मुख हर हर बोले, सो जान ए तुत कते न डोले, कहो नानक जोरा चैन आए, हर माला ताके संग जाए, आसा महला पंजवा। जिसका सब किसका होए, हे जन लेपना व्यापे कोए, हर का सेवक सदगी मुक्ता, जो कुछ करे सोई फल जान के, आत निर्मल दास की जुगता, रहाव सगल त्यागर सरणी आया, हे जन काम व्यापे माया, नाम निधान जाके मन माहे, जिसको चिंता सुपने नाहे, कहो नानक गुरपूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया, आसा महला पंजवा। जो सो प्रसन्न होयो प्रा मेरा, ता दुख परम कौ कैसे नेरा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोए निर्गुण कौ लिहो उधारी, रहाओ मिट गया दुख सारी चिंता, फल पाया जब सदगुरमंता, सोई सत सत गए सोए, सेमर सेमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओ कर्मा, जाके मन मसिया घर नामा, आसा महला पंजवा। काम क्रोध अंकार विभूते, हर सिमन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते, रहाओ मोह परम्बो जोन पवाया, अस्तिर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंध कूप गृह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा, कहो नानक तो प्रसरणाई, ईहा सुख आगे गद पाई, आसा महला पंजवा। तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे, तू मेरा ठाकुर हम तेरे द्वारे, तू मेरा कर्ता हम सेवक तेरा।

तू सुमरत मैं तेरा तान, आनंद ने जपो नाम गुणतास, नानक की प्रपय अरदास, आसा महला पंजवा, रोमन हारे चूड़ कमाना, हस गा सोक करत बेगाना, को मुआ काके कर गावन, को रोवे को हस गद पावन, रहाओ बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुंच न मुका फिर पछताना, फिर गुण मैं वरते संसारा, नरक सुर्ग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सबल जन्मता का प्रवान, आसा महला पंजवा, सोए रही प्रभ खबर न जानी, और पया बौर पछतानी, प्रे प्रेम सहज मन अंध तरोरी, प्रभ मिलबे की लालसा, ताते आलस कहां करोरी, रहाओ कर्म अमृत आन निसारे, खिसर गयो तूम पर डारे, साध मुहे लादी अंकारे, दोष नहीं प्रभ करने हारे, साध संग मिटे परम अंधारे, नानक मेली सिर जनहारे, आसा महला पंजवा, चरण कमल की आस प्यारे, जम कंकर नस गए विचारे, तू चित आवे तेरी माया, सिमरत नाम सगल रोग खया, रहाओ अनक दुख देवे अवरा कहो, पहुंच न साके जन तेरे कहो, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, नानक की अरदास सुनी जे, केवल नाम हृदय मैं दीजे, आसा महला पंजवा, मन तृप्तानो मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद परी बनी, जाके गृह सब किस गए पूर्ण, हो फेटिया निरभय तनी, रहाओ नाम दृढ़ाया साध कृपाल, मिड़गी भूख महा विकराल, ठाकुर अपने की नी दात, जलन बुझी मन होई सांत, मिट गई पाल मन सहे समाना, नानक पाया नाम खजाना, आसा महला पंजवा, ठाकुर स्यो जाकी बने आई, भोजन पूर्ण रहे अगाई, पशु न थोरा हर भगतन को, खात खर्चत दिलशत देवन को, रहाओ जाका तनी अगम गुसाई, मानुख की को केत चलाई, जाकी सेवा दस अष्ट सिधाई, पालक दिष्ट ताकीला गोपाई, जा को दया करो मेरे स्वामी, कहो नानक नाही तिनकामी, आसा महला पंजवा, जो मैं अपना सदगुर त्याया, तब मेरे मन मां सुख पाया, मिट गई गणत बनास्यो संसा, नाम

सदा प्रफुल्ल काट काट संपट भय रे जाका अपग सभा संघ है साधा आरती कीर्तन सदा आनंद महिमा सुंदर सदा बेअंत जिसे प्राप्त तिस ही लेना संत चरण ओ आयो सरना आचड़े हर साल गरा।

ऐसी स्त्री एक राम उपाई, उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई। रहाओ बैठ गौरी सब जग जोया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोया। गुरमुख नाम लगे से सोया, वर्त नेम कर था के पुनः चरना। तट तीर्थ पवे सब तरना, से उबरे ये सदगुर की सरना। माया मोहे सबो जग बाधा, हम पचे मनमुख मुँह राखा। गुरु नानक बाँ पकड़ हम राखा, आसा महला पंजवा। सर्व दुख जब सरे स्वामी, ईगा उहा कामना प्राणी। संतृप्ता से हर घर त्याए, हर कृपा अपने नाए लाए। सर्व सुख पर तुमरी रजाए, रहाओ संग होवत को जांत दूर। सो जन्म मरता नित नित चूर, जिन कछ दिया ते चित तनाहे। मां बिखिया में दिन रहन जाहे, कहो नानक प्रसिमरो एक। गद पाई गे गुर पूरे टेक, आसा महला पंजवा। नाम जपत मन तन सब हरिया, काल मर दोख सगल पर हरिया। सोई दिवस पला मेरे पाई, हर गुण गाए परम गद पाई। रहाओ साध जना के पूजे पैर, मिटे उपद्रे मन ते बैर। गुर पूरे मेल चगर चुकाया, पांच दूत सब वस गद आया। जिस मन वस्य हर का नाम, नानक इस ऊपर कुर्बान।

सर्व सुख पावे, आवर कहू पे बौर ना जावे, सदा आनंद आनंदी साहेब, गुण निधान नित नित जापिए, बलिहारी ते संत प्यारे, जिस प्रसाद प्रभ मनवासी है रहाओ, जाका दान मिखूटे नाही, भली पांत सब सह समागी, जाकी बख्सना मेटे कोई, मन वासाई गे सचा सोई, सगल समगरी ग्रे जाके पूरन, प्रभ के सेवक।

बंधन काट सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे, वडे भाग पूज गुर चरना, सगल प्यार पाई प्रसरना, गुर नानक जाको पया दयाला, सो जन होआ सदा निहाला, आसा महला पंजवां, सतगुर साचे दिया भेज, चिर जीवन उपजिया संजोग, उदरे माए आए किया निवास, माता कै मन बहुत विगास, जम्या पूत भगत गोविंद का, प्रगटिया सामने लिखिया तुरका रहाओ। दसी मासी उगुण बालक जन्म लिया, मिटिया सोग मां आनंद चिया, गुरबाणी सखी आनंद गावे, साचे साहिब कै मन पावे, वदी वेर बो पीढ़ी चाली, धर्म कलागर बंद बहाली, मन चिंदिया सतगुरु दिवाया, पय अचिंत एक लिवलाया, ज्यो बालक पिता ऊपर करे बहुमान, बुलाया बोले गुर के पान, गुजी शन्नी नाही बात, गुर नानक तुठा की नींदात, आसा महला पंजवां, गुर पूरे राख्या दे हाथ, प्रगट पया जन का प्रताप, गुर गुर जपी गुरु गुर त्याई, जी की अरदास गुरु पे पाई, रहाओ शरण परे साचे गुरुदेव, पूर्ण हो।

ओंकार सतगुर प्रसाद मैं बंदा बैखरीद सच साहेब मेरा जियो पिंड सब किसदा सब किश है तेरा मान निमाने तू तनी तेरा परवासा बिन सचे अनटेक है सो जानो काचा रहाओ तेरा हुकुम अपार है कोई अंत

अंतर सो छूटे महाजालते जिन गुर शब्द निरंतर गुर की महिमा क्या कह गुर विवेक सतसर हो आज युगादि जुग है जुग पूरा परमेश्वर नाम ते आवो सद सदा हर घर मन रंगे जियो प्राण तन गुरु है नानक कह संगे आसा महला पंजवा साई अलख पार घोरी मन वसे दुख दर्द रोग माए मैंडा हवन से होवन्या कुर्बान साई अपने होवे अंधकणा मन तन जापने रहाओ बिंदक गाल सुनी सचे तिस तनी सुखी हूँ सुख पाए माए ना कीम गणी नैन पसंदो सोए टेक मुस्ताक पही मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई बेक तेव संसार हब्बा हूं बहारा नानक का पात साहो जिससे जहारा आसा महला पंजवा लाग भगत आराध्य जब ते पियो पियो कवन जूत में लावो निर्गुण बखई जियो तेरी ते गोविंद गोपाल दयाल प्रभ तू सब ना के नाथ तेरी सिट सब रहाओ सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर नाम बिहू नड़िया से मरन विसूर विसूर दास दासन पाए मिटिया तिना गौन विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल तौन जैसे पस हरे आओ तैसा संसार सब नानक बंधन काट मलाव आ प्रभ आसा महला पंजवा हब्बे थोक विसार इको ख्याल कर झूठा लाए गुमान मंत्र अर्प तार आड़ पैर साल आहे सिरजनहार तू जीवा तेरी दात कृपा करो मुंह रहाओ तोई कम कमाए जित मुख उजला तोई लगे सच जे तू दे अला जो न टहंदो मूल सो कर रस कर इको चित वसाए कदे ना जाए मर तिना प्यारा राम जो प्रा पाणिया गुर प्रसाद अकथ नानक वखाणिया आसा महला पंजवा जिन्ना ना विसरे नाम से कनेहा खेद न जाणो मूल साई जेया मन तन होए निहाल तुम संग पेटिया सो पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मंड उधारे तिनखे जिन मन मुठा आप पूरे भगत से जिसनु मने आप सोई मानिए प्रगट पुरख परवान सब ठाई जानिए दिन सरैन आरात संभाले साहा सहा नानक की लोचा पूर सचे पातशाह आसा महला पंजवा पूर या सर्व ठाए हमारा खसम सोए एक सहब सिर छत दूजा नाहे कोए जो पावे त्यों राख रखन हारिया तुय बिन अवर न कोए नदर निहारिया रहाओ प्रद पाले प्रवे आप धड़कड़ सारिये जिस मन उठा आप तिस नाम सारिये जो करे सो आप अपन पाणिया भगता का सहाई जुग जुग जानिया जप जप हरका नाम कदे ना चूरिए ना

मन चढ़ लंगी है, आड़ पैर गुण गाए, साधु संगी है रहाव। भोगे भोग अनेक विण नावे सुनिया, हर की भगत बिना मर मर रुनिया। तप्पड़ पो सुगंध तन मर्दन मालना, बिन सिमरन तन शार सर पर चालना। मां विघम संसार विरले पेखिया, छूटन हर की सरण लेख नानक लेखिया। आसा महला पंजवा, कोई ना किसी संग काहे गर्बी है, एक नाम आधार पौजल तरबी है।

अराध मना बिनासे सगले रोग रखन हार अपार राखे अग्न माघे शीतल हर हर नाम सिमरत तप्त जाय सूग सहज आनंद कना नानक जन तूरा कार्य सगले सिद्ध पय भेटिया गुरपूरा आसा महला पंजवा गोविंद गुणी निदान गुरमुख जानिए हुए किरपाल दयाल हर रंग माणिए आवो संत मिला हर कथा कहानिया अन दिन सिमरे नाम तज लाज लोकानिया हर हाव जप जप जीवा नाम होवे अंधकणा मिथ्या मोह संसार झूठा विसना चरण कमल संग ने हो किने विरले लाया तन सुहावा मुख जिन हर त्याया जन्म मरण दो काल सिमरत मिट जावई नानक कहे सुख सोए जो प्रापावई आसा महला पंजवा आवो मीत एकत्र होए रस कस सपुंच अमृत नाम हर हर जपे मिल पापा मुंच तत विचारो संत जनो ताते बिघन न लागे खीन पय सब तस्करा गुरमुख जन जागे रहाओ बुद्ध गरीबी खर्च लेहो होमे बिख जा रहो साचा हट पूरा शब्द वखर नाम वापारो जियो पिंड तन अर्पया सेई पतवंते आपनड़े प्रापाणिया निदकेल करंते दुरमत मद जो पीवते बिखली पद कमली राम रसाण जोरते नानक सच अमली आसा महला पंजवा उदम किया कराया आरंभ रचाया नाम जपे जब जीवना गुर मंत्र दरड़ाया पाए परे सदगुरु कै जिन परम बदारिया हर कृपा प्रवे अपनी फिर सा सवार रहाओ कर गए लीने अपने सच हुक्म रजाई जो प्रदित्ती दात सा पूर्ण वड़ियाई सदा सदा गुण गाई है जप नाम मुरारी नेब नभायो सदगुरु प्र कृपा तारी नाम तान गुण गाओ लाभ पूरे गुरदित्ता वणजारे संत नानका प्रसाओ अमिता आसा महला पंजवा जाका ठाकुर तुही प्रभ ताके वड़पागा ओ सुहेला ससुगी सप्रम पो पागा हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा पारा तरन करामन सगल बिद सो सदगुरु हमारा रहाओ दूजा नाही और को ताका पो करिए गुर सेवा महल पाईए जगदुत्तर तरीए दृट तरी सो पाईए मन माए निधाना जाको तुम कृपाल पये सेव से परवाना अमृत रस हर कीर्तनो हो विरला पीवे वजो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे आसा महला पंजवा जा प्रभ की हो चेरली सो सब ते ऊंचा सब कुछ ताका कांडिये थोड़ा अरम ऊंचा जी प्राण मेरा तनो साहिब की मनिया नाम जिसे के उजली ते दासी गनिया रहाओ वे प्रभु आनंदमय नव मानक हीरा रजी ताई सदा सुख जाका तू मीरा सखी सहेरी संग की सुमत दिरडाओ सेवो साधु पाओ कर तो निधघर पाओ सगली दासी ठाकुर सब कहती मेरा जिसे सिगारे नानका तेस सुखे बसेरा आसा महला पंजवा संतां की होए दासरी हे उचारा सिखरी थल गुणा गुण उत्तमो परता दूर ना पेखरी यो मन सुंदर अपना हर नाम जीठे रंगरी त्याग स्यान बचातरी तू जान को पाले संगरी रहाओ परता कैसो मानिए तो सीगार बनाएरी दूजा पाओ वसारिये क्यों तंबोला खाएरी गुर का सद कर दीप को ए सदकी सेज बिछाएरी आड़ पैर कर जोड़ रहो हो फेटे हर रायरी तेसी चज सीगार सब साई रूप अपारी साई सुहागण नानका

तद गीते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जावला हुक्म ना बूझता तभी लो दुखिया गुरम हुक्म पछाणिया तभी ते सुगिया ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ गृह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने साध सद बल जाओ गुरु विटो हो वारे जिस मिल सच सुवाओ रहाओ सागन अपसागन किसको लगे जे चीत न आवे।

मार्ग पंथ सुम्हारी ना दृढ़ गुरमन में दिया मोरी तसा बुझारी बिन पी गावो रह नी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विश्वास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो त्यो दान दो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवणी कथा नयन

शरीरे सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंचो ही मोय शरीरे जिन मिरमारे पंच सूर वीर ऐसो कौन बलीरे जिन पंच मार बिदार गुदारे सो पूरा ए कलीरे हराव वड़ी कोम पस पागे नाही मोकम फौज हठलीरे कहो नानक किन जन निर्दलया साह संगत कै चलीरे आसा महला पंजवा नीकी जीकी हर कथा उत्तम आन सुल रस पीकी रे रहाओ बहु गुण तुन मुन जन खट बेते अवर ना किश लाई की रे बिखारी निरारी अपारी सहजारी साध संग नानक पीकी रे आसा महला पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमख नमन ते टारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन

पंजवा नीकी सा संगानी रघाव पैर मूर्त पल गावत गावत गोविंद गोविंद बखानी त्यालत बैसत सोवत हर जस मंत्र चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकुर गौरो नानक सरन पछानी राग अस महला पंजवा कार बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्याग सगल सियाणपा पज पार ब्रह्म निरंकार एक साते नाम बाजो सगल दिशे सार सो प्रव जानिए सत्संग गुर प्रसादी बूझिए एक हर के रंग रहाओ सरन समरथ एक केरी दूजा ना ही ठाओ महा फौज लंघिए सदा हर गुण गाओ जन्म मरने वारिये दुख ना जंपर होए नाम निदान सोई पाए कृपा करे प्रसोए एक टेक आधार एको एक का मन जोर नानक जपिए मिल साध संगत हर बिन अवर ना होर आसा महला पंजवा जियो मन तन प्राण प्रभ के दीगे सब रस भोग दीन बंद बजी दाता सरण राखण जोग मेरे मन त्याए हर हर नाओ हलत पलत सहाय संग एक सिवन लाओ रहाओ वेद शास्त्र जन ते आवे तरण को संसार कर्म तर्म अनेक क्रिया तब ऊपर नाम अचार काम क्रोध अंकार बिनस मिले सदगुरुदेव नाम दृढ़ कर भगत हर की भली प्रभु की सेव चरण शरण दयाल तेरी तू निमाने मान जी प्राण आधार तेरा नानका प्रतान आसा महला पंजवा डोल डोल महा दुख पाया बिना साधु संग खाट लाभ गोविंद।

मनोरथ सुहाओ तन तन तेरा तू प्रा मेरा हमरे बस किश नाग ज्यों ज्यों रख त्यों त्यों रहना तेरा दिया खागे जन्म जन्म के किल विख कट मजन हर जन तूर पाए भगत परम पौ नस हर नानक सदा हजूर आसा महला पंजवा आगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग आप किरपाल किरपा प्रतारी सदगुर बख्शिया हर नाम काल युग उधारिया गुरदेव माल मूत मूड़ जे मुग्ध होते सब लगे तेरी सेव रखाओ तू आप करता सब सृत तरता समय रहा सुमाय धर्म राजा बिस्माद होआ सब पई पैरी आए साजुग त्रेता द्वापर पणिये काल युग ऊतमो जुगा माघे अहे कर करे सो अहे कर पाए कोई ना पकड़िए किसे थाए हर जियो सोई करे

बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। मां बिखादी दुष्ट अपवादी ए पुनीत सिंगारे, जन्म पवंते नरक पड़ंते इनके कुल उधारे। कोई ना जाने कोई ना माने, छे प्रगट घर द्वारे।

मो कुटुंब दिखे रसमत मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ शोभन आनंद उलास मान मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तेल मर्म ना लहे कर कृपा रखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा ए पदे ओहा प्रेम प्री हरहाओ कनक मानक गज मोती न लालन नहे नहा नहीं राजन पागन हुकुम न साधन किश किश न चाही चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री आसा महला पंजवा गुरे दिखायो लोए न रहाओ ईत ऊत कट कट कट कट तू ही मोहना कारण करना तारण करना एक सोयना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवा हर घर नाम अमोला ओ सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ न जाई ओ अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक ओ हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत निभागे ठाकुर आयो आहे हरहाओ नाम पदार्थ हुए सकारत हृदय चरण बसागे

आया सेव कमाया गौन रस रस गावे एक है अस दर्श पे अस आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम त्यावो हृदय बसाओ जिबन को नाही प्रसरणी आये सर्व फल पाईए सगले दुख जाही जीन को दाता पुरख बिधाता नानक कट कट आही आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम ते आवे सर्व फल पावे सो जन सुखिया हुआ राज कहावे औ कर्म कमावे बाध्यो नलनी प्रंसुआ कहो नानक जिस सतगुर केटिया सो जन ने चलतिया आसा महला पंजवा कर चौदवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओह निहो नवेला अपने प्रीतम स्यों लाग रहे रहाओ जो प्रापावे जन्म न आवे हर प्रेम भगत हर प्रीत प्रचय प्रसंग मिलीजे यो मन दीजे नानक नाम मिले अपनी दया करो आसा महला पंजवा मिल राम प्यारे तुम मिल तीरज को ना करे रहाओ सिमरत शास्त्र बहुकर्म कमाए पर तुमरे दस बिन सुख नाही वर्त नेम संजम कर थाके नानक साध सरण

अनप्राणक रवयो सर्वथानक लयो ज पयानक पायो पेड़ थानक तो चुकी सगल कान लैनो जिस मथानक पय पावक पार प्राणक निकर किसे थानक हार रस रसे मानक लाती तिस पूगानक नानक सह सुमायो रे मना आसावरी महला पंजवा हर हर हर गुणीगा जपिगे सहज तुनीगा साधु रसन पनीगा छूटन दिल सुनीगा।

दौसोह परहार सह सोचीत तन मन सोमपव कृष्ण प्रीत तीतर एक अनेक असंख कर्म धर्म बहु संख असंख बिन पय भक्ति जन्म बिरंत हर गुण गावे मिल परमारंत आप मरे मारे पी आप उपाय था प्योताप सिट उपाई ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रात सूतक अगन पखे जग खाए सूतक जल तल सब गीताए नानक सूतक जन्म मरीज गुर प्रसादी हरस पीजे राग आसा महला पहला आ विचारे सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुर पूरा गुर माने मन ते मन तीरा ऐसा साओ सरा पी कर साची नगर एक लिव तर रहाओ पूंजी नाम निरंजन सार निर्मल साज रता पैकार सिवत सहज कर गुर करतार आसा मनसा सब जलाए राम नारायण तय कहाए गुर ते वाट महल कर पाए कंचन काया ज्योत अनूप तिर पवन देवा सगल स्वरूप मैं सो तन पल्ले साच अखूट पंच तीन नव चार समावे तारण गगन तल तार रगावे बार जातो उल्ट परावे मूर्ख होए न आखी सूजे जे वारस नहीं कहया बूझे पेता माता जल स्यों लूजे उत्तम संगत उत्तम होवे गुण को तावे अवगुण धोवे किन गुरसेवे सहज न होवे हीरा नाम जवे हरलाल मन मोती है तुसका माल नानक परखे नदर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचारी गुरमुख सचा नाम मुरारी अरहाओ आए निस निर्मल थान सुथान तीन पवन ने केवल ज्ञान साचे गुरते हुकुम पछान साचा हरख नाई ते सोग अमृत ज्ञान महारस भोग पंच सुमाई सुखी सवलोक सगली ज्योत तेरा सब कोई आपे जोड़ बिछोड़े सोई आपे करता करे सोई ताए उसारे हुक्म सुमावे हुक्मो वरते ज्योत पावे गुर बिन पूरा कोई न पावे बालक बिरद न सुरत प्राण पर जो बिन बूढ़े अब महान बिन नावे क्या लहस निदान किसका आन थान सहज न जाना परम पुलाना फिर पछताना गल पागी बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर पागे सतगुर राखे से वड़ पागे ना

मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरमुख राम नाम तृप्तस खोजत पाओ सहज हरे हरहाओ काम क्रोध मन मोह शरीरा लभ लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नाम साच पछाणे अंतर की गत गुरमुख जाने साज शब्द बिन मैल ना पछाणे निरंकार में आकार समावे अकल कला सच साच टिकावे सोनर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम सिया सुखदाता अनदिन बाणी नामे राता मेरा प्रवलाए ता को लागे होमे मारे सब दे जागे ऐथे उथ सदा सुख आगे मन चंचल बिद ना ही जाने मन मुख मैल शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम खाणे हर जू आगे करी अरदास साधु जन संगत हुए निवास किल दुख काटे हर नाम।

नीत नीत कर बंधिए जे रहना होई, पिंड पवे जीव चरसी जे जाने कोई, ओही ओही क्या करो है होसी सोई, तुम रोवोगे ओसनो तुमको कौन रोई, धंधा पिट्यो पाई हो तुम कूड़ कमावो, ओ ना सुनी कथी तुम लोक सुनावो, जिसते सुत्ता नानका जागा ए सोई, जे कर बूझे अपना ता नींद ना होई, जे चलदा ले चलिया केश संपे नाले, ता तन संचो देख के बूझो बिचारे, वंज करो मसूद लहो

तनी साचा मुख नाम रहाओ। सिद्धा सेवन सिद्ध पीर मांगे हृद सिद्ध, मैं एक नाम ना विसरे साचे गुर बुद्ध।

दास तुम्हारे रिस प्राण आधारी ताके रूप न जागी लखने क्या कर आग विचारी तीन गुणा तेरे जोगी अंतर चारे तेरी आखाणी कर्म होवे ता परम पद पाइये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे पराणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आमन जानी जान तो पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे ए आणी चारे वेद ब्रह्मे को दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताक हुगमना बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगे जुगे के राजे किए गावे कर अवतारी इन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब साचा देता साच वखाणी जा को सच बुझावे अपना है दे नाम सुमाणी आसा मोहल्ला तीजा सदगुर हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन वसाया शब्द चीन सदा सुख पाया सुन मन मेरे तत् ज्ञान देवन वाला शब्द जाने गुरमुख पाएगे नाम निधान रहाओ सदगुर भेटे की वडियाई जिन ममता अग्न तृष्णा बुझाई सहजे माता हर गुण गाई बिन गुर पूरे कोए न जानी माया होए दूजे लोभाणी गुरमुख नाम मिले हर बाणी गुर सेवा तपा सिर तपसार हर जीव मन वसे

दुहागनी मैल ना पायनी ना जानन फिर का सुवाओ। हिक्का बोले नानवे दूजा पाओ सुवाओ, क्यों मनुआ क्यों करवस आवे। गुर प्रसादी ठाकिए ज्ञान मती कर आवे रखाओ। सुहागनी आप सुवारी ओन लाए प्रेम प्यार, अगुर के पाने चल दिया नामे सह सीगार। सदा रावे पिर अपना सच्ची सेज सुपाए, फिर के प्रेम होइया मिल प्रीतम सुख पाए। ज्ञान अपार सीगार है हो बावंती नार, सास भराई सुंदरी फिर के हेत प्यार। सुहागनी विच रंग रखे होन सच्चे अलाखे पार, सतगुर सेवन अपना सच्चे पाए प्यार। सुहागनी सीगार बनाया गुण का गलहार, प्रेम पिरमल तन लावना अंतर रतन विचार। भगत रते से उत्मा जात पात सब दे होए, बिन नावे सब नीच जात है दिष्टा का कीड़ा होए। हा हो कर दी सब फिर बिन सब दे हो ना जाए, नानक नाम रते तिन हो मैं गई सच्चे रहे सुमाए। आसा महला तीजा सच्चे रते से निर्मले सदा सच्ची सोए, ऐथे कर कर जाप दे आगे जुग जुग प्रकट होए। ए मन रूड़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए, रूड़ी बाणी जे रपे ना यो रंग ले ना जाए। हरहाओ हम नीच मैले अत अभिमानी दूजे पाए विकार, गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल जोते पार। बिन गुर कोई ना रंगी है गुर मिले रंग चढ़ाओ, गुर के पए पाए जोरते सिवती सच सुमाओ। पए बिन लाग न लग गई नामन निर्मल होए, बिन पे कर्म कमावने झूठे ठाओ न कोए। जिसनु आपे रंगे सो रबसी ससंगत मेलाए, पूरे गुरते ससंगत उपजे है जे सच सुपाए। बिन संगती सब ऐसे रहे जैसे पलटोर, जिन की तित से ना जाननी विन नावे सब चोर। एक गुण विहाचे अवगुण विकणे

साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रखाओ दर्शन की प्यास तनी चितवत अनग प्रकार तरो अनुग्रो पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार मन परदेसी आया मिलो साध के संग जिस वखर को चाहता सो पायो नाम है रंग जेते माया रंग रस बिरस जाए खिन माहे भगत रते तेरे नाम से सुख पुंचे सब ठाए सब जय चलतो पेखिए नेचल घर को नाओ धर्म तराई सास्यो नेचल पावे ठाओ मीत साजन सुत बंद प को होत ना साथ एक निवाहू राम नाम दीना का प्रभनाथ चरण कमल भोयत पये लग सागर तरयो ते हे पेट्यो पूरा सदगुरु साचा प्रस्यो नेह सा तेरे की जाचना विसरना सास गिरास जो तु पावे सो फला तेरे पाने कार्ज रास सुख सागर प्रीत मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पेटे परमानंद आसा मोहल्ला पंजवा बिरघड़े तार चौथा चंता की जात एक ओंकार सदगुर प्रसाद पार ब्रह्म प्रसिमरिये प्यारे दर्शन को बल जाओ जे सिमरत दुख बीसरे प्यारे सो क्यों तजना जाए यो तन वेती संत पह प्यारे प्रीतम दे मिलाए तुलसी गार बिखिया के फीके।

जीवन दर्थ दिखाए, जो जी तोते बिछरे प्यारे, जन्म मरे बिख खाए, जिस तू मिले सो मिले प्यारे, तिसके लागो पाए, जो सुख दर्शन।

तन मन तेरे आगे शब्द सुभागे कर अमृत फल पावे। बुद्ध पाठ ना पाईए बहुत चतराईए पाए मिले मन पाने नानक ठाकुर उम्मीद हमारे हम नहीं लोका।

स्वामी तिन फल तोट न आवे, तिन जरा न मरना, नरक न परना, जो हर नाम ते आवे हर हर करे से सूके नाही, नानक पीड़ ना खाए जियो, नाम लैन से सोह है तिन सुख पल होवे, मन है सेजन जाए जियो, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला पहला, शांत कर तीजा, तू सुन हरना कालिया, की वाड़गेरा ताराम, बिखबल मीठा चार दिन, फिर होवे ताता राम, फिर होए ताता खरा माता, ना बिन प्रताप है, ओ जेव सायर दे लहरी, बिजली जिवे चमक, हर बाज राखा कोए नाही, सोए तुझे बिसारिया, सदकहे नानक चेत रे मन, मरे हर ना कालिया, पावरा फूल पहंतिया, दुख अत पारी राम, मैं गुर पूछा अपना, साचा बिचारी राम, विचार सगुर मुझे पूछया, पावर बेली रातो, सूरज चढ़या पिंड पड़या, तेल तामन तातो, जाऊ मग बादा खाए चोटा, शब्द बिन बेतालिया, सच कहे नानक चेतरे मन, मरे पवरा कालिया, मेरे जीड़िया परदेसिया, इत पवे जंजा ले राम, साचा साय मन मस, की फासे जम जा ले राम, मछली विशुन्नी नैन रुन्नी, जाल बद्धक पाया, संसार माया मोह मीठा, अंत परम चुकाया, परत कार चित लाए हरस्यों, छोड़ मनो अंदेसिया, सद कहे नानक चेतरे मन, जीड़िया परदेसिया, नदियां माव शून्या, मेला संजोगी राम, जुग जुग मीठा विस परे, ओ जाने जोगी राम, कोई सहज जाने हर पछाणे, सदगुरु जन चेतया, बिन नाम हर के परम फूले, पचे मुद अचेतया, हर ना भगत ना हृदय साचा, से अंत ताही रुन्या, सदकहे नानक शब्द साचे, मेल चिरी मुशुन्या, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला तीजा, शंत कर पहला, हम करे साचा सोहला, साचे शब्द सुहाया राम, तान पिर मेल पया, प्रभ आप मिलाया राम, प्रभ आप मिलाया, सच मन वसाया, कामन सहजे माती, गुर शब्द सी

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलो जन्म सवाया दूजड़े कामन परम पुली हर वरना पाए राम कामन गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम बिरथा जन्म गवाए मानमुख ए आणी औगुणवंती चूरे अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया ता तिर मिलया हदूरे देख तिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाए नानक विण नावे कामण परम पुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए फिर संग कामण जानिया गुरमेल मिलाई राम अंतर शब्द मिली सहजे तप्त बुझाई राम शब्द तप्त बुझाई अंतर सांत आई सहजे हारस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माणे सच्चे शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके एकी मुक्त न पाई नानक बिन भगती जग बौराना सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन आनंद पया हर जीव मेल प्यारे राम सा तन हर के रस रसी गुर के शब्द अपारे राम शब्द पारे मिले प्यारे सदा गुण सारे मन मसे छेद सुहावी जां तिर रावी मिल प्रीतम अवगुण नसे जित कर नाम हर सदा त्याई है सोहिलड़ा जुग चारे।

परम पद पाया अनह तुन वाजे नित वाजे गाई सदगुर बाणी नानक दाद करी प्रदाते ज्योति जोत समाणी मनमुखा मनमुख मोए मेरी करमाया राम खिन आवे खिन जावे दुर्गंध मड़े चित लाया राम लाया दुर्गंध मड़े चित लागा जो रंग कसुंभ दिखाया खिन पूर्व खिन पश्चिम छाए ज्यों चक कुम्हार पवाय दुख खावे दुख संचे पुग दुख की बिरद वधाई नानक बिखम सोहेला तरिये जा आवे गुरसरणाई मेरा ठाकुरो ठाकुर नीका अगम अथाह आराम हर पूंजी चाही मेरे सदगुर सहाराम हर पूंजी चाही नाम साही गुण गावे गुण पावे नींद भूख सा पर हर त्यागी सुन्ने सुन समावे वणजारे इक पाती आवे ला हर नाम ले जाहे नानक मंतन अर्प गुर आगे जिस प्राप्त सो पाए रतना रतन पदार्थ बहु सागर परे आराम बाणी गुरबाणी लागे तीन हद चढ़िया राम गुरबाणी लागे तीन हद चढ़िया निर्मोल करतन अपारा हर हर नाम अतोल कपाया तेरी भगत परे पंडारा समुंद विरोल शरीर हम देखया एक वस्त अनूप दिखाई गुर गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेद न पाई आसा महला चौथा चिम चिमे चिम चिम वरस अमृत तारा राम गुरमुखे गुरमुख नदरी आराम प्यारा राम आराम नाम प्यारा जगत निस्तारा आराम नाम वड्याई काल युग राम नाम बोहिथा गुरमुख पार लंघाई हालत पलत राम नाम सुहेले गुरम करनी सारी नानक दात दया कर देवे आराम नाम निस्तारी आरामो राम नाम जपया दुख किल बिख नाश गवाया राम गुर परचे त्याया मैं हिरदे राम रवाया राम रवे आराम हिरदे परम गद पाई जा गुर शरणाई आए लोभ विकार नाव डुबदी निगली जा सतगुर नाम दराए जी दान गुर पूरे दिया आराम नाम चित लाए आप कृपाल कृपा कर देवे नानक गुर शरणाए बाणी आराम नाम सुनी चितकार जिस सब सुहाए राम रोमे रोम रोम रोमे मैं गुरमुख राम ते आए राम राम नाम ते आए पवित्र होए आए इस रूप न रेख्या काई आरामो राम रविया कटे अंतर सब तृष्णा भूख गवाई मन तन शीतल सिगार सब होआ गुरमत राम परगासा नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा जिन्नी रामो राम नाम सारिया से मनमुख मूड अपागी राम इन अंतरे मोहे आपे खिन खिन माया लागी राम माया मन लागी मूड पे अपागी जेन राम नाम नहीं पाया अनेक कर्म करे अभिमानी हर रामो नाम चुराया महा बिखम जम पंथ दुहेला कालूगत मोह अंधियारा नानक गुरमुख नाम त्याया ता पाए मोह द्वारा रामो राम नाम गुरु राम गुरमुखे जाने राम यो मनुआ खिन ऊब पयाली परम दा इकत कर आने राम मन इकत कर आने सब गत मित जाने हर रामो नाम रसाए जन की पैज रखे राम नामा

नाम समाया, जिन अंतरे राम नाम वस, किन चिंता सब गवाया राम, सब अर्था सब धर्म मिले, मन चिंदिया सो फल पाया राम, मन चिंदिया फल पाया राम नाम ते आया, आराम नाम गुण गाए, दुरमत कबुद्ध गई सुध होई, आराम नाम मन लाए, सफल जन्म शरीर सब हुआ, जित राम नाम परगासया, नानक हर पसदा दिन राती, गुरमुख निर कर वासया, जिन सरदा राम नाम लगी, तिन दूजे चित न लाया राम, जे धरती सब कंचन कर दीजे, बिन नावे अवर न पाया राम, राम ना मन पाया परम सुख पाया, अंत चलदिया नाल सिखाई राम नाम, तन पूंजी संची ना डूबे ना जाई, राम नाम ए जुग में तुलगा, जमकाल नेड़ ना आवे, नानक गुरमुख राम पछाता, कर कृपा आप मिलावे, रामो राम नाम सत्ते, सत गुरमुख जानिया राम, सेव को गुर सेवा लागा, जिन मंतन अर्प चढ़ाया राम, मंतन अर्पया बहुत मन सरदया, गुर सेवक पाए मिलाए, दीना नाथ जिया का दाता, पूरे गुर ते पाए, गुरु सिख सिख गुरु है, एको गुर उपदेश चलाए, राम नाम मंत हिरदय देवे, नानक मिलन सुपाए, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, आसा शांत महला चौथा, कर दूजा हर हर करता दुख बेनास, पतत पावन हर नाम जियो, हर सेवा पाई परम गद पाई, हर उत्तम हर हर काम जियो, हर उत्तम काम जप गे हर नाम, हर जपिए अस्थिर होवे, जन्म मरण दोवें दुख मेटे, सहजे ही सुख सोवे, हर घर कृपा तारो ठाकुर, हर जपिए आत्म राम जियो, हर घर करता दुख बिनासन, पतत पामन हर नाम जियो, हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम, हर जपिए सब गुर पाए जियो, गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए, हर जबत सुनत दुख जाए जियो, हर हर नाम जपया दुख बिरसया, हर नाम परम सुख पाया, सदगुर ज्ञान बलिया

मोर चायो नंगे आमन जामणिया। फिर साधु सरणी पड़िगे चरणी अब टूटस मोजो कीती है। को नानक संत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत तब दिनियर देखिए। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डेवे। मन ऐसी प्रीत कीजे जैसी तरण पतार उर्जी तेरे सिवे। इहो मन लाल दीजे मन लाले दीजे भोग करीजे। हाँ खुशियां रंग माने फिर अपना पाया रंग लाल बनाया। अत मिलो मित्र चिराने गुरथिया साखी ता डिठम आखी। फिर जे अवर ना दिसे को नानक संत दयाल मोहन के मन हर चरण गहीजे। ऐसी मन प्रीत कीजे आसा महला पंजवा सलोक। बन में फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे। नानक पेटे साध जाप हर पाया मन माहे। शंत जाको खोजे असंख मुनि अनेक तपे। ब्रह्मे कोड आराध्य ज्ञानी जाप जपे। जब ताल संजम क्रिया पूजा अनक सोधन बंदना। कर गमन बसदा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बनते न पशु पंखी सगल तुझे आराधते। दयाल लाल गोविंद नानक मिल सा संगत होए गते। कोट बिशन अवतार शंकर जटा तार। क्या है तुझे दयार मन त रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूर्क प्रथनी। सुर सिद्ध गण गंधर्व त्यावे यख किन्नर गुण पणी। कोड इंदर अनेक देव जप्त स्वामी जय जयकार। अराध नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोड देवी जा को सेव लक्ष्मी अनक पात। गोवत प्रगट जा को आराध्य पौन पाणी दिनस रात। नक्षत्र ससियर सूर त्यावे बद गगना गावे। सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे। सिमरत पुराण चतर बेत हर शास्त्र जा को जपात। पद पावन भगत वचल नानक मिलिगे संग सात। जेती प्रभु जनाई रसना तेत पनी। अनजानत जो सेव तेती न जाए गनी। अवगत अगणत अथा ठाकुर सगल मंजे बहारा। सर्व जाजक एक दाता न दूर संगी जारा। बस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी। यो दान मान नानक पाए शीस साधे तर चरणी। आसा महला पंजवा सलोक। उदम करो वडभागी हो सिमरो हर हर राए। नानक जे सिमरत सब सुख होवे। दुख दर्द प्रम जाए शंत। नाम जपत गोविंद न अलसाइए। पेट साधु संग जमपुर न जाइए। दुख दर्द ना पौ व्याप नाम सिमरत ससुखी। सास सास आराध हर हर त्याए सो प्राव मान मुखी।

बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज सुमानी सुख सोय लड़े हर गामन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सरसे हर नाम रहसे प्रभु आप कृपा तारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभु बनवारिया शुभ दिवसे आए सहज पाए सगल निध प्रा पागे बिनवंत नानक।

आप चितवो चितनाथ, चितवो चितनाथ रे रख ले वो शरण अनाथ रे। मिल चाओ चाई ले प्राण, सुंदर तन ध्यान, सुंदर तन ध्यान हे मन लब्ध गोपाल ज्ञान हे। जाचक जन राखत मान, प्रामाण पूर्ण दुख बदीरन, सगल इश पूजंतिया। हर कंठ लागे दिस भागे, मिलनहा सेज सुहंतिया। प्रभ दृष्ट धारी मिले मुरारी, सगल करमल पए खान। बिनवंत नानक मेरी आस पूरन,

सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सालाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान स

विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड है विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संयोग विस्माद वियोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिवत विस्माद सालाहा विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरे भाग महला पहला कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पातालि आकाशी कुदरत सर्ब आकार कुदरत वेद पुराण कुतेबा कुदरत सर्ब विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्ब प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान

अंधी रित ज्ञान विहूणी भाए परे मुरदार। ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सीगार, उच्चे कूके वादा गावे जोधा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुजत

ताग, तिनकर ब्राह्मण पूरे नाद, ओना पे आवे ओई साध, कूड़ी रास कूड़ा वापार, कूड़ बोल करे आहार,

हाथ शुरी जगत का साई, नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण, मलेश तान ले पूजे प्राण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर कसे न जाना, देख चौका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, यो अन्न असाडा फिटे, तान फिटे फेड़ करेन, मन झूठे चुली परेन, कहो नानक सच त्याई है, सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी, चित्ते अंदर सबको वेख नदरी हेड़ चलाएंदा, आपे देव डेयाईया, आपे ही कर्म कराएंदा, वड्डो वड्डा वड मेदनी, सिर सिर तंदे लाएंदा, नदर उपठी जे करे, सुल्ताना कहो कराएंदा, दर मंगन पिख ना पाएंदा, श्लोक मोहल्ला पहला, जे मुहा का कर्म होए पितरी दे, अगे वत सन्याणी है, पितरी चोर करे, वड्डे हथ दलाल के, मुस्पी एक करे, नानक अगे सो मिले, जे खट्टे काले दे मोहल्ला पहला, जो जोरू सिर नावणी, आवे वारो वार, जूठे जूठा मुख बस, नेतनेत होए खुवार, सूचे ए ना आखी है, बैन जे पिंडा तोए, सूचे से ही नानका, जिन मन वसे आसोए पौड़ी, तुरे पराने पौन वेग, हर रंगी हरम सवारिया, कोठे मंडप माड़िया,

तपि सन्यासी बहु तीर्थ प्रमना लुंजत मुंजत मोन जटा तार अंत तउ मरना ताते सेवियले राम ना रसना राम नाम हित जाके कहां करे जमना अरहाओ आगम निर्गम ज्योतक जाने बहु बव्या करना तंत मंत्र सब औखद जाने अंत तउ मरना राज भोग अरशद सिंघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुभाषक चंदन अंत तउ मरना वेद पुराण सिमर सब खोजे

सगत स्नेह कर सुन्नत करिए मैना बदोगा पाई जौरे खुदाई मुझे तुर्क करेगा अपन ही कट जाई।

फिर पछताना बिरध पायो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भोजंग बलयो अरहाओ चूके सर्वर पाल बंधावे लूणे खेत हथवार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुग्ध फिरे चरण शीश कर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे जेवा बचन शुद्ध नहीं निगसे ताबरे तर्म की आस करे

साखी शब्द सुरत नहीं उबजे, खेंच तेरी सब लीना, श्रवणन विकल्पय संग तेरे, इंद्री का बल थका, चरण रहे कर टर्क परे है, मुखो ननिक सह बसा, थाके पंच दूत सब तस्कर,

मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन तिरपन डसियले गुर प्रसाद दीठी रहाओ सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साज पछाने।

चर पय सचिरामन जाई बार बैल गोन कर आई कहत कबीर जो इस पद बुझे राम रमत तिस सबके सूझे बाईस चौपद तथा पंच पदे आसा श्री कबीर जीओ के तिपदे अठ

अस बड़ पाग हमारा तुर नर मुन जन कौदक आए कोड़ ते तीस उजाना कह कबीर मोए ब्याए चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की।

करे लड़ाई माया सद मतवारी। बड़े पाई के जब संग होती तब हो ना प्यारी। कहत कबीर पंच को चगर जगरत जन्म गवाया। झूठी माया सब जग बाध्या मैं राम रमत सुख पाया।

नैन देख पतंग उर्जे पासना देखे आग काल फासना मुग्ध चेत कनक का मन लाग कर विचार विकार परहर

यो सिंगार मिलन के ताई, हर ना मिले जग जीवन गुसाई, हर मेरो पेर हर की भौरिया, हरा बड़े मैं तन कलौरिया रहाओ, तन पे

गीरा प्रगट पयो जब गुर गमदिया दिखाई आसा पहली क्रूप कुजाद कुलखनी सौरे पेये बुरी आपकी स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी पली सरी मोई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी हराव कौ कबीर जब लौरी आई बड़ी का सुहाग टरे हो लौरी संग पई अब मेरे जेठी और तरे।

रीत है हर मेरी, हर मेरी कथा कहानी जी, गुर प्रसाद मेरा मन पीजे, एहा सेव बनी जियो रहाओ। हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा पाई, हर की मैं भूख लाग, हर नाम मेरा मन तृप्त, हर मेरा साक अंत होए सगाई, हर बिन होर रास कूड़।

मिरसंगत गुण परगास जिन हर हर हरस नाम न पाया ते पाघीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखया लिखास। तन तन सतसंगत जित हरस पाया मिल नानक नाम परगास। गूजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम। मिल सतसंगत शब्द मन मोह है जब गोविंद गोविंद त्याई है। सबको दान दे प्रभ ओह है मेरे पाई जना मुको। गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा। मिल गुर साध संगत जन सोह है रहाओ। सुख सागर हर भगत है गुरमत कौला रिद सिद लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा हर नाम जपत हर नामे सो है। दुर्मत पाघीन मत बीके नाम सुनत आवे मन रो है। कौआ काग को अमृत रस पाई है तृप्त विष्टा खाए मुख गो है। अमृत सर सतगुर सतवादी जित नाते कौआ हंस हो है। नानक तन तन वड्डे वडभागी जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। गुजरी महला चौथा हर जन ऊतम ऊतम बाणी मुख बोले पर उपकारे। जो जन सुने श्रद्धा भगत सेती

काहे रे मन चितवै उद्दम जा आहर हर जीओ परिया सैल पत्थर मैं जन त्यो पाए ता कारजक आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत्संगत मिले से तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया तूके कष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोग सुध बनता कोई न किस की तरिया सिर सिर रजक सोमा।

सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल तरया जन नानक बल बल सब बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया गुजरी महा।

लश्कर नेब खवा सब त्यागे, जंपर ऊठ सिदास हुए अनन, महर की दृढ़ता आपस को जानात, जो अनिंद निंद कर छोड़ो।

सगल सिट को तणी कही जय, जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुद्ध पाई, हर कीर्तन आधारो। नाम दियो त्रिलोचन कबीर दासरो, मुक्त पयो चम्यारो। गुजरी महला पंजवा, है नाही को बूजन हारो। जाने कमन पता, शिव बरंज अर सगल मोन जान। गहे ना सकाहे गता, प्रभ की आगम अगाध कथा। सुनिए अवर अवर विद बुझिए।

साध संग नानक दर्श पायो बिनसो सगल नेहोरा गुजरी मोहल्ला पंजवा आल जाल प्रमोत जावे प्रसे तीरंग लाई मन को ए उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जे भेटे टूटे माया बंद बिसर ना कब हूं जाई हराओ करत करत अनकबो पाती।

आओ साध संग उधार एहो मन आढ़ पैर आराध काम क्रोध अंकार बिनस मिटे सगल उपाद अटल अशेद अपेद स्वामी सरणता की आओ चरण कमल आराध हृदय एक स्यों लिवलाओ पार ब्रह्म प्रादया तारी बक्सली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नान

अनेक करणी सबल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे भय पूर्ण काम सास सासना बिसर कब हूँ।

आराध श्री तर सबल मूर्त करण कारण जोग गुण रमण शरमण अपार महिमा फिर ना होत बियोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण काल।

पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा ना हो रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वडे पागले लागी। कबल प्रगास पए सासंगे दुर्मत बुद्ध त्यागी। आठ पैर हर के गुण गावे सिमरे दीन दयाला। आप तरे संगत सब उधरे बिन से सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ। शरण प्रयो नानुता तुमरी दे राख्यो हर हाथ। गुजरी अष्टपदियां महला पहला कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक नगरी पंच चोर बसियल बबरजत चोरी तावे। त्रेद समार रखे।

जैसी पूख होए अभ्यंतर तू समरथ सच देवन हार। अए जी जब तब संजम सच आधार, हर घर नाम दे सुख पाई है तेरी।

परे गुर शरण तुम्हारी मैं अवर ना दूजी पाई। आप तब एको एक पुकारो आद जुगा सिखाई। ऐ जी राखो पैज नाम अपने की तुझ गी स्यों बने आई। कर कृपा गुर दर्श दिखावो हम में शब्द जलाई। ऐ जी क्या मांगो किस रहे ना दिसे हे।

काम क्रोध हरन मद मोह दैन मुरार मन मकरंद जन्म मरने वार धरणी तर पत रख परमानंद जलत अनक तरंग माय गुर ज्ञान हरिद मंत छेद अंग बुद्ध करना मैं चिंत मेट पुरख अनंत सिमर स्मृत पल मुहूर्त प्रत्यान सहज समाद दीन दयाल प्रसन्न पूर्ण।

करे सही जन सोने, तिन को परजा पूजने आई। वाह वाह कर्म प्राप्त होवे, नानक दर सच्चे शोभा पाई। पौड़ी बजक पाठ काया गढ़ पीतर, कूड़क सत अभवानी। परम फूले नदर ना आवनी, मानमुख अंध अज्ञानी। उपाय किते ना लभनी, कर पेख थके पेखवानी। गुर शब्दी खोलाइन हर नाम जपानी, हर जीव अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी। श्लोक महला तीजा, वाह वाह करते हैं रैन सुख विहाए, वाह वाह करते हैं सदा आनंद होवे मेरी।

मन की कटिए मैल सत्संग उठिया जन मरण पौ कटिए जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाए छप इस्यो लायन रंग जेदी सब तारिया ऊंची ऊंचा थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा बार विडानड़े हुमस तुमस कूका पईयां राही तौ सह सेती।

जीवे रग राई तन ना बोना सब तजो है कबीर। हर का नाम लिख लियो शरीर रखाओ जब लग तागा बाहो बेही तब लग बिसरे राम स्नेही ओछी मत मेरी जात जुलाह। हर का नाम लयो मैं लाह कहत कबीर।

प्रभुए कृपाल कमर पर गास सदा सदा घर त्याई है रखाओ अंतर एको बार एको समय एक सुमाई है काट अब काट रव्या सब ठाई हर पूर्ण ब्रह्म दिखाई है उस करे शिव को मुन केते तेरा अंत न कतहु पाई है सुखदाते दुख पंजन स्वामी जन नानक सदबल जाई है देव गंधारी माई होनहार सो होई है राज रेव रचना प्रवे अपनी कहां लाभ कहां खोई है रखाओ कह फूले आनंद बिखे सोग कब असनो कब रोई है कब हु मैल परे अभमानी कब साधु संग तोई है ओए ना मेटे प्रभु का किया दूसर नहीं अलोई है कहो नानक तिस गुर बलिहारी जे प्रसाद सुख सोई है देव गंधारी माई सुनत सोज पै डरत मेर तेर तदो अभमाना शरण स्वामी की परत रखाओ जो जो कहे सोई पल मानो नाहिन का बोल करत निमख ना बिसरोही है मोरे ते बिसरत जाई हो मरत सुखदाई पूर्ण प्रकर्ता मेरी बहुत ज्ञान पजरत निर्गुण क्रूप कुलहीन नानक हो अनंद रूप स्वामी परत देव गंधारी मन हर कीर्त कर सदहू गावत सुनत जपत उधारे वर्ण अबरना सब हूँ हरहाओ जैते उपजो तई समायो ए बद जानी तब हूँ जहाँ जहाँ ए देही तारी रह न पायो कब हूँ सुख आयो पय परम बिनासे कृपाल होए प्रभ जब हूँ कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ साध संग तज लभ हूँ देव गंधारी मन जू अपने प्रभ पावो नीचो नीच नीच अत नाना होए गरीब बुलाओ अरहाओ अनक अडंबर माया के बिरते तासु प्रीत कटावो जो अपनो स्वामी सुख माने ता मैं शोभा पावो दासन दास रेण दासन की जन की टैल कमावो सर्व सुख बढ़ियाई नानक जीव मुखो बुलावो देव गंधारी प्रभ जी तौ प्रसाद प्रमंडारियो तुमरी कृपा ते सब को अपना मन में एव बिचारे ओ रहाओ कोट प्राद मिटे तेरी सेवा दर्शन दुख उतारयो नाम जत मासु पायो चिंता रोग बिदारयो काम क्रोध लोभ चूड़ निंदा साधु संग बिसारयो माया बंद काटे कृपा निद नानक आप उधारयो देव गंधारी मान सगल सियान परही कर्ण करामन गार स्वामी नानक ओट गही रगाओ आप मेड पै सरनाई ए मत साधु कही प्रभु की आज्ञा मानसु पाया परम अंधेरा लही जान प्रवीण स्वामी प्रा मेरे शरण तुम्हारी अही खिन में थाप थापन गारे कुदरत कीम ना पही देव गंधारी महला पंजवा हर प्राण प्रभु सुखदाते गुर प्रसाद काहू जाते रगाओ संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम तिनको काल ना खाते रंग तुम्हारे लाल पै है राम नाम रसमाते मां किरबिख कोट दुख रोग प्रभ

निर्गुण निबाणी अनाथ बिनवै मिलो प्रभ कृपा निधे। प्रम पीत खोइये सहज सोइये प्रभ पलक पेखत नव निधे। गृह लाल आवै महल पावै मिल संग मंगल गाइये। नानक पैम पै संत सरणी

जिन हर घर संजोग मिलाया बिहागड़ा महला पंजवा कर कृपा गुरपार ब्रह्मपूरे अन दिन नाम खाना राम। अमृत बाणी उच्चना हर जस।

भगत मंगै हर भगत पाईए प्रभत आईए जाए मिल गए हर जना। मान मोह विकार तजिए अर्प तन तन इहो मना बड़ पुरख पूरन गुण संपूरन प्रम पीत हर हर मिल फगै। बिनवंत नानक सुन मंत्र सगिए हर नाम नित नित नित जपे हर नार सुहागणे।

या राम तुग सहज आनंद विरोध सदगी गुण गोपाल नित गाई है। पज साध संगे मिले रंगे बौड़ जोन ना ताई है। गय कंठ लाए सह सुखाए

कोड़ अपराध परे पी तेरे चेरे राम दुख हरन कृपा करन मोहन कल कले से पंजना शरण तेई रख लिहो मेरी सर्व वै निरंजना सुनत पिखत संग सब कै

जिन्ना माया मोहे प्यार। महला तीजा, तेन पौ संसा क्या करे जिन सतगुर सिर करतार। तुर तिन की पैज रखदा आपे रखन हार। मिल प्रीतम सुख पाया

तू मन लह सो जन साबास तब तेरा चोज वर्तदा दुख सुख तुझ पास। सलोक महला तीजा गुरमुख सच्चे पाम दे दर सच्चे सच्यार साजन मन आनंद है गुर का शब्द विचार अंतर शब्द वसाया दुख कटिया।

बिख माया तन संच मर अंत होए सवशार कर्म धर्म सु संजम करे अंतर लोभ विकार नानक जे मनमुख कमावे सो थाए ना पावे दर गए होए खुवार पौड़ी आपे काणी आपे बाणी आपे खंडवर पंड करे आ समुंद आप गए सागर आपे ही वेचे रतन तरे आप लहाए करे जिस किरपा

ओ खंडन आप करे सब दान, जिसनु गुरमुख आप बुझाए सो सदगी दरगे पाए मान। जेदी पैज रखे घर स्वामी सो सत्या घर जान। श्लोक महला तीजा, नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है, अंधे कर्म कमाए। सबदे सो चेतन लावई, जित सुख वसे मन आए, तामस लगा सदा फिरे। अहे

साहेब सदा हजूर है, परमे के चौड़ कट के अंतर ज्योत तरेह, हर का नाम अमृत है, दारू एहो लाए हो, सागुर का पाना चित रखो, संजम सच्चा ने हो, नानक ऐसे सुखे अंदर रखसी, अगे हर्षों केल करे हो पौड़ी, आपे पार अठारे बनस्पत

राम राम करता सब जग फेरे, राम न पाया जाए। अगमे गोचर अत वड्डा, अतुल न तुले आ जाए। कीमत कने न पाई, किते न ले आ जाए। गुर कै शब्द भेदया, इन बिद वसया मन आए। नानक आप अमेओ है, गुर कृपा ते रहया समाए। आपे मिलया मिल रहे, आपे मिलया आए। महला तीजा, ए मन यो तन नाम है। जित सदा सदा सुख होए, टोटा मूल न आवई। लाहा सदगी होए, खाद खर्चे तोट न आवई। सदा सदा ओ दे, सहसा मूल न होवई। हांत कदे न होए, नानक गुरमुख पाई है। जा को नदर करे पौड़ी, आपे सब कट अंदर, आपे ही बाहर। आपे गुप्त वर्तदा, आपे ही जहर। जो शक्ति गोबार कर, वर्त्या सुनहर। उत्थे वेद पुराना साहता, आपे हार नर हर। बैठा ताड़ी लाए, आप सब दूगी बाहर। अपनी मित आप जान।

हिंदू मूले भूले अखुट्टी जाही, नारद कया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुग्ध गवार, ओए जा आव डुबे तुम कहां तरनहार, पौड़ी सब क्यों तेरे वस है तू सच्चा साहो, भगतर ते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर राज्य राज जन खाहो, सब पदार्थ पाइयन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो, श्लोक महला तीजा सब किस हुक्मे आमदा सब किस हुक्मे जाए, जे को मूर्ख आपो जाने अंधा अंध कुमाए, नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनु कृपा करे रजाए, महला तीजा सो जोगी जुगत सो पाए, जिसनु गुरमुख नाम प्राप्त होए, ते जोगी की नगरी सब को वस पेखी जोग न होए, नानक ऐसा विरला को जोगी जिस कट प्रगट होए, पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार, आपे सुखम पालिए आपे पासार, आप एकाती होए रहे आपे वड़ परवार, नानक मंगे दान हर संतारे नार, होर दा तार ना सुजई।

पिरो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल परे यार ओए आए न सका तुझ कन प्यारे पेज न सका कोए आओ सुभागी नींदड़िए मत सो देखा सोए तय साहब की बात जे आखे कहो नान क्या दीजे शीश वड़े कर बैसन दीजे विण सिर सेव करीजे।

निर्मल नाम से मन आए पर में भूला फिरे संसार मर जन्मे जम करे खुवार नानक सेवड़ भागी जिन घर नाम के आया गुर प्रसादी मन मसाया वढ़ांस महला तीजा हौ में नावे नार विरोध है दोना वसे एक ठाए हमें जो सेवा ना हो गई कामन बिरथा जाए हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए हुक्म मने ता हर मिले ता विचो होमे जाए रखाओ होमे सब शरीर है होमे ओपत होए होमे वड़ा गुबार है होमे विच बुझ न सके कोए होमे विच भगत न हो वई हुक्म ना बुझिया जाए होमे विच जियो बंद है नाम ना वसे मन आए नानक सतगुर मिले होमे गई ता सच वसया मन आए सच कमावे सच रहे सच्चे सेव समाए वढ़ांस महला चौथा कार पहला एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सेज एक को पव ठाकुर गुरमुख हर रावे सुख सागर।

सदा संभाले, सो हर हर नाम सदा सदा संभाले। जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया, नानक हर जान हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया। वढ़हंस महल

कोट कोट लख तावे एक तिल ताका मैल न पावे सुहावी कौन सुवेला जित प्रा मेला रहाओ लाख भगत जाको आराध लाख पीसर तब ही साध।

पूरे मन निर्मल कोई संता तूरे चरण कमल हिरदे उर तारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वढ़ंस मगल्ला पंजवा साध संघर अमृत पीजे ना जू मरे न कबहू चीजे वड़भागी गुर पूरा पाईए गुर कृपा ते प्रभु त्याई ऐ रखाओ रतन जवाहर हर मान कलाला सेमर सेमर पा पय निहाला जत कद पेखो साधु सरना हर गुण गाए निर्मल मन करना घड़ घड़ अंतर मेरा स्वामी उठा नानक नाम पाया प्रतूठा वढ़ंस महला पंजवा।

प्रीतम भाई मैं मिलियो मित्र सुखदाता, ओ जी की मेरी सा बेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता। हम एक खेन तिस बिन रह ना सका।

अमाली गुर सदगुर कै लग पैरे वढ़ांस महला तीजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सच्ची बाणी सच धुन

अमृतसर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मने लागा, दुख डेरा ठाया, सुख मन में आय बसया, जाम तय पुरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप यो पाया, ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप मनावना, जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रूआवना, जो दे सहना मने कहना आख ना ही वावना, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, सब उपाय ने आप आपे नदर करे, कौड़ा कोई ना मांग।

गुण संग्रह अवगुण विकण आपे आप छाण गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे सदरस तीजे नानक घर की भगत निराली गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने कर अंदर रस पुंच तू लाह लय परथाए राम लाह परथाए घर मन नमसाए।

बीज मन अंदर सत्य शब्द सुपाए हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमति मन कर वसया सत्य शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो सत बैरागो साचरते विचारी ना बिना सब जग बौराना सब देखो में मारी साचे शब्द लाग मत उपजे गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पो पंजन हर आवे मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वडया ई राम गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम हुक्म मिलाई सह समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वडयाई गुर ते पाई सच सवारण हारा पाओ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहया सुनाई वढ़ांस महला तीजा मन मेरेया तू सदा सच समाल जियो अपने कर तू सुख वसे ओए न सके जम काल जियो काल जाल जम जोए न सके सचे शब्द लिवलाए सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रखाए दूजे पाए परम विगुति मन मुकमोही जम काल कहे नानक सुन मन मेरे तू सदा सच समाल मन मेरे अंतर तेरे निधान गए बाहर वस्त ना पाल जो पावे सो पूंच तू गुरमुख नदर निहाल गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर घर नाम सखाई मनमुख अंदले ज्ञान में गुणे दूजे पाए खुवाई बिन नावे को छूटे नाही साबादी जमकाल नानक अंतर तेरे निधान है तू बार वस्त ना पाल मन मेरे जन्म पदार्थ पाए कह एक सच लगे वापारा सदगुरु सेवने अपना अंतर शब्द अपारा अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौन दपाई मन कुमाया मोह आपे दू संतापे दूजे पद गवाई होमे मार सच शब्द सुमाने सच रते अदकाई नानक मान जन्म दुलंब है सदगुर बूझ बुझाई मन मेरे सदगुर सेवने अपना से जनवड भागी राम जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम से जन बैरागी सच लग लागी अपना आप पछाणिया मत नेचल अत गूढ़ी गुरमुख सहजे नाम खाणिया एक कामन हितकारी माया मुहे प्यारी मनमुख सोए रहे अपागे नानक सहजे सेवे गुर अपना से पूरे वडभागे वढ़ांस महला तीजा रतन पदार्थ वणजी है सदगुर दिया बुझाई राम ला लाभ हर भगत है गुण में गुणी समाई राम गुण में गुणी समाए जिस आप बुझाए ला भगत सह सारे बिन भगती सुख ना होई दूजे पद खोई गुरमत नाम आधार वखर नाम सदा लाभ है जिसनु एत वापार लाए रतन पदार्थ वणजी है जा सदगुर दे बुझाए माया मोह सब दुख है खोटा यो वापारा राम कूड़ बोल बिकामणी बहु वदे विकारा राम बहु वदे विकारा सहसा यो संसार बिन नावे पद खोई पढ़ पढ़ पंडित वाद वकाने बिन बूझे सुख ना होई आमन जाना कदे ना चूके माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है।

राम होमन तन काट काट दे जो सदगुर बचन सुनाए मेरे मन बैराग पया बैरागी मेल गुर दर्शन सुख पाए हर घर कृपा करो सुखदाते दियो सदगुर चरण गम तूरा कोई आन मिलावे मेरा सदगुर पूरा गुर जेवड दाता मैं अवर न कोई राम हर दानो हर दान देवे हर पुरख निरंजन सोई राम हर घर नाम जिनी आराध्या तिनका दुख परम पौ पागा सेवक पाए मिले वड़ पागी जिन गुर चरणी मन लागा कहो नानक हर आप मिलाए मिल सदगुर पुरख सुख होई गुर जेवड़ दाता मैं अवर ना कोई वढ़हंस महला चौथा हाँ गुरबेन खरी निमानी राम जग जीवन दाता गुरमेल सुमानी राम सदगुर मेल घर नाम सुमानी जप हर घर नाम त्याया जिस कारण हों ढूंढ ढूंढेंदी सो सज्जन हर कर पाया एक दृष्ट हर एको जाता हर आत्म राम पछाणी हों गुरबिन खरी निमाणी जिन्ना सदगुर जिन सदगुर पाया तिन हर प्रा मेल मिलाए राम तिन चरण सरेव हम लागे तिनके पाए राम हर घर चरण सरेव तिनके जिन सदगुर पुरख प्रत्याया तू वड़दाता अंतर जामी मेरी सरदा पूर हर राया गुरसिख मेल मेरी सरदा पूरी आनंदन राम गुण गाए जिन सदगुर पाया तिन हर प्रा मेल मिलाए हों वारी गुरसिख मीत प्यारे राम हर नामो हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नाम आधारे राम हर घर नाम मेरा प्राण सखाई तिस बिन कड़ी निमख नहीं जीवा हर घर कृपा करे सुखदाता गुरमुख अमृत पीवा हर आपे सरदा लाए मिलाए हर आपे आप सवारे हों वारी गुरसिख मीत प्यारे हर आपे पुरख निरंजन सोई राम हर आपे मिले करे सोई राम जो हर प्रभावे सोई होवे अवर न करना जाई बहुत सियाण पलया न जाई तर थाके सवच तराई गुर प्रसाद जन नानक देखया मैं हर बिन अवर न कोई हर आपे पुरख निरंजन सोई वढ़हंस महला चौथा हर सदगुर मेल हर सदगुरु चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सदगुरु पाया अज्ञान अंधेर बिना से सदगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास गिरा से जिन कौ हर प्रकृपा थारी ते सदगुर सेवा लाया हर सदगुर मेल हर सदगुरु चरण हम पाया मेरा सदगुरु प्यारा मैं गुरबिन रहन ना जाई राम हर नामो हर नाम देव मेरा अंत सुखाई राम हर घर नाम मेरा अंत सुखाई गुर सदगुर नाम दृढ़ाया जिथे पुत कलत्तर कोई बेली नाही तिथे हर घर नाम छिड़ाया तन तन सदगुर पुरख निरंजन जित मिल घर नाम त्याई मेरा सदगुरु प्यारा मैं गुरबिन रहन ना जाई मेरा सदगुरु प्यारा मैं गुरबिन रहन ना जाई जिन्नी दर्शन सदगुर पुरख न पाया राम तन नेफल जन्म सब बिरथा गवाया राम नेफल जन्म तिन बिरथा गवाया ते सागत मोए मर चूरे कर होंदे रतन पदार्थ पूखे पागीन घर दूरे हर घर तिनका दर्शना करियो जिनी हर घर नाम ना त्याया
ਜਿਨਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਨਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀਨ ਹਰ ਪਾਸ ਬੇਨੰਤੀ ਰਾਮ। ਗੁਰਮਿਲ ਗੁਰਮੇਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ ਭਗਤੀ ਰਾਮ। ਹਰ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ ਭਗਤੀ, ਜਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾ ਕਿਰਪਾ ਥਾਰੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਬੇਲੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹਮਾਰੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਹਰ ਘਰ ਨਾਮ ਘਰ ਸਤੀ। ਹਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀਨ ਹਰ ਪਾਸ ਬੇਨੰਤੀ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਸੁਖਦਾ ਤਾਰਾਮ। ਹਮ ਪੁੱਛੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਘਰ ਬਾਤਾ ਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਘਰ ਬਾਦ ਪੁੱਛੈ ਜਿਨ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ। ਪਾਏ ਲੱਗੇ ਨਿਤ ਕਰੇ ਬੇਨੰਤੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਥ ਬਤਾਇਆ। ਸੋਈ ਭਗਤ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸੰਤ ਕਰ ਜਾਣੇ,

मरण मुनसा सूर्य हक है जे होए मरे परवाणु नानक किसनू बाबा रोईए बाजी गए ओ संसारो कीता वेखे साहिब अपना कुदरत करे बिचारो कुदरत बिचारे धारण धारे जिनकी या सो जाने आपे वेखे आपे बूझे आपे हुकम पछाणे जिन कछ किया सोई जाने ताका रूप अपारो नानक किसनू बाबा रोईए बाजी गए ओ संसारो वढांस महला पहला दखणी सच सरंदा सच्चा जानिए सचड़ा पर्वत गारो जिन आपी ने आप साजिया सचड़ा अलाख्या पारो दोए पुल जोड़ विछोड़ियन गुरबिन कोर अंधारो सूरज चंद सिरजियन अहे निस चलत विचारो सचड़ा साहिब सच तू सचड़ा दे प्यारो अरहाओ तो सिरजी मेदनी दो सुख देवन हारो नारी पुरख सिरज है बिख माया मोह प्यारो खानी बाणी तेरिया देजिया आधारो कुदरत तखत रचाया सच नबेड़ नगारो आवा गमन थिरजिया।

तेत पै दे पग खिस तेर रंग राता सो सच्चा चोला तेत पै दे तिखा निवारे प्रा मेरा साहिब शब्द ऊंचा है क्यों मिला प्रीतम प्यारे मैं प्रभ सच पछाणिया होर फूली अवगणियारे मैं सदा रावे तेरे अपना सचड़े शब्द विचार।

चूला पिरकै अंक समाए ते जेवड़ अवर ना सूझई किसे आगे कहिए जाए। तो सच्चा सच सलाहिए जे सतगुर दे बुझाए जिन्नी सचड़ा सच सलाया हाउ तिन लागो पाए। सीजन सच्चे निर्मले तिन मिलिया मल सब जाए तिन मिलिया मल सब जाए।

कारण कारण समर्थ है सह सृजनहारे। जिस तू मिले प्यारिया सो तुद मिले गुरमुख विचारे। हों बलिहारी सतगुर अपने जिन मेरा।

आवे जावे। बिन सतगुर से वे फिक्का बोलना नाम ना वसे मन माहे। नानक बिन सतगुर से वे जां पुरबद्धि मारियन मुए काले उठ जाहे महला पहला। जालो ऐसी रीत जित में प्यारा विसर नानक साई परी परीत जित साहिब सेती।

पौड़ी। गुर सिखा मन हर प्रीत है, गुर पूजन आवे, हर नाम वणंजे रंग सिउ, लाह हर नाम ले जावे। गुर सिखा के मुख उजले, हर दरगे पावे, गुर सदगुर बोल, हर नाम का वड़भागी सिख।

मनमुख कायर क्रूप है बिन नावे नक नाहे अनदन तंदे व्यापिया तुबने पी सुख नाहे नानक गुरमुख होवे ता उबरे नाहे ता बद्धे दुख सहाहे महला तीजा गुरमुख सदा दर्श होने गुर का शब्द कमाहे अंतर सांत सदा सुख दर सच्चे सोभा पाहे नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाहे पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गद पाई गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई गुरमुख हर भगत हर आप लहाई श्लोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत न आईया शब्द न लागो पाओ ओसनु सुख न उबजे भावे सौ गेड़ा आवो जाओ नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे सिउं लिव लाओ महला तीजा ए मन ऐसा सतगुर खोज लहो जित सेवे जन्म मरण दुख जाए सहसा मूल न हो गई होमे शब्द जलाए कूड़े की पाल विचों निकले सच वसे मन आए अंतर सांत मन सुख होए ससंजम कार कुमाए नानक पूरे कर्म सतगुर मिले हर जीव कृपा करे रजाए पौड़ी जिसके कर दीवान हर होए तिसकी मुठी विच जगत सब आया तिसको तलकी किसे दी नाही हर दीवान सब आन पैरी पाया मानसा क्यों दीवाणो कोई नस पज निकले हर दीवाणो कोई किथे जाया तू ऐसा हर दीवान मसिया भगतां कै हिरदय तेन रहंदे खोंदे आन ता भगतां अगे खलवाया हर नावे की वड्याई कर्म प्राप्त होवै।

ब्राह्मणकार यो मनुआ सदा सुख वस्से सहज करे व्यापारा अंतर गुर ज्ञान हरतन है मुक्त करा मनहारा नानक जिसनु नदर करे सो पाए तो होवे दर्श प्यारा पौड़ी तन तन सो गुरसिख कहिए तो सतगुर चरणी जाए पया तन तन सो गुरसिख कहिए जे हर नामा मुख राम कहया तन तन सो गुरसिख कहिए जिस हर नाम सुने मन अंद पया तन तन सो गुरसिख कहिए जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया तिल गुरसिख कौ फाउ सदा नमस्कारी जो गुर कै फाणे गुरसिख चलिया। श्लोक महला तीजा मन हड़के ने न पायो सब थके कर्म कमाए मन हड़के कर परम दे दुख पाया दूजे पाए रिद सिद्ध सा मोह नाम नवस्ते मन आए गुरसेवा ते मन निर्मल होवे अज्ञान अंधेरा जाए नाम रतन हर प्रगट होआ नानक सहज समाए। महला तीजा शब्द साधन आयो नाम न लगो प्यार रसना फिता बोलना नित नित हुए खुवार नानक किरद पय कमावना कोई न मेटन हार पौड़ी तन तन सतपुरख सदगुरु हमारा जित मिले हम को सांते आई तन तन सतपुरख सदगुरु हमारा जित मिले हम हर भगत पाई तन तन हर भगत सदगुरु हमारा जेकी सेवा ते हम हर नाम लिवलाई तन तन हर ज्ञानी सदगुरु हमारा जिन वैरी मित्र हम कौ साध समधिट दिखाई तन तन सदगुरु मित्र हमारा जिन हर नाम स्यों हमारी प्रीत बनाई। श्लोक महला पहला कर ही मुंद विदेश पेर ने चूरे संभाले मिलदियां टेल ना हो गई

आया विछोड़ा सवनहा पुछो जाए सियाणिया आगे मिल के नाहा जिन मेरा साहिब विसर वड्डी वेदन तनाह की सहायो साचा सोए जा की नदर सदा सुखोए रहाओ वड्डा कर सालाना है की होसी सोए सवना दाता एक तू मानस दात न होए जुत पावे सोतिए रन के रुने होए तत्ती उपर कोड़ गढ़ केती गई वजाए जो असमान ना मावनी तेन नक नथा पाए जे मन जाने सूलियां काहे मिठा खाहे नानक औगुण चेतड़।

प्रसन्न कोई न किसी जेह अंडज जेरज उत्कुज सेतज तेरे की तेजनता। एक पुरब मैं तेरा देखिया तू सबना महेरवंता तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया मैं मूर्ख किस दीजै परमत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजै। सोरठ महला पहला हौ पापी पतत परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी अमृत चाख।

संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सो वडभागी, जिसनु आप मिलाए। हारस पीजन सदा त्रिवतासे, विचो आप गवाए। यो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मगना पाए। नानक सतगुर मिले ता अखी वेखे, करे अंदर सच पाए।

आपे अंडज जेरज सेत उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए आपे सूत आपे बहु मणिया कर सकती जगत परोए आपे ही सूद तार है प्यारा सूद खिंचे टह ठेरी होए मेरे मन मैं हर बिन अवर न कोए सगुर विच नाम निधान है प्यारा कर दया अमृत मुख चोए रहाओ आपे जल तल सब्त है प्यारा प्रवे आपे करे सोए सबना रिजक समाहां दा प्यारा दूजा अवर न कोए आपे खेल खिलाएं दा प्यारा आपे करे

आपे शब्द समाहा, आपे लिखण आप लिखारी, आपे लेख लिखाहा। मेरे मन जप राम नाम ओमाहा, आनदन आनंद होवे वडभागी, लै गुर पूरे हर लाहा रहाओ। आपे गोपी कान है प्यारा, बन आपे गऊ चराहा, आपे सावर सुंदरा प्यारा, आपे वंश बजाहा।

कर्म करे अहंकारी, साधु परसद ही प्रपाया, गोविंद शरण तुम्हारी, गोविंद प्रीत लगी अल प्यारी, जब सत्संग पै साधु जान, फिर दे मिलया सांत मुरारी, रघाओ तू हिरदे गुप्त बसे दिन राती, तेरा भाव ना बुझे गुवारी, सगुर पुरख मिलया प्रपटिया, गुण गावे गुण विचारी, गुरमुख प्रगास पया सांत आई, दुरमत बुद्ध निवारी, आत्म ब्रह्म चीन सो पाया, सत संगत पुरख तुम्हारी, पुरखे पुरख मिलया गुर पाया, जिन को कृपा पई तुम्हारी, नानक अतुल सहज सुख पाया, अन दिन जागत रहे बनवारी, सोरठ महला चौथा, हर सो प्रीत अंतर मन बेदया, हर बिन रहन ना जाई, जो मछली बिन नीर बिनसै, त्यो नामे बिन मर जाई, मेरे प्रभ कृपा जल देवो हर नाई, हो अंतर नाम गां दिन राती, नामे ही सांत पाई, रघाओ ज्यों चातरक जल बिन बिल लावे, बिन जल प्यास न जाई, गुरमुख जल पावे सो सहजे, हरिया पाए सुपाई, मनमुख फूले दैत से डोले, बिन नावे दुख पाई, जन्म मरे फिर जूनी आवे।

तू दाता मांगन को सगली दान दे प्रापन खिर मैं अवर खिने मैं अवरा आचरज चलत तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गैर गंभीरो ऊंचो अगम अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अंध पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरणा संत हमारी ओर सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यों बने आई पूर्व लिखे आप पाई।

सुखदाता गुर पूरे दिया उपदेशा तुम्हें संग पराता रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अवमहाना ता मैं सुख नहीं पाई है हो रे तू सगल की मेरे मान तो अनद मंगल सुख पाई है काल न पाने अंतर विद जान ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ओ मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधव पार ब्रह्म निरंकारा ना वर्तन ना मुवा लेवा नाम नानक प्राण अधारा सोरठ महला पंजवा मृतक कौ पायो तन सासा विशिरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पै स्रोते हर नामा मोह गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकि कीमत कहन न जाई हरहाओ दू सो काटायो डेरा अंध मंगल बिसरामा मन बांछित फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा ईहा सुख आगे मुख उजल मिट गए आवन जाने निरपो पै हृदय ना मसिया अपने सदगुर कै मन पाने उठत बैठत हर गुण गावे दू

मनमसिया अवनासी ताको बिघन न को लागे। जो सदगुर अपने रखे चरण कमल बसेर अंतर अमृत हरस जाके। हर सेवा सेव प्रव्यापने जिन मन की इच्छ पुजाई नानक दाता के बलिहार है जिन पूर्ण पैज रखाई। सोरठ महला पंजवां माया मोह मगन अंधियार है दे

गुर गोपाल प्रसोई, जा की शरण पया सुख पाई है, बहुत दुख ना होई रहाओ। वड भागी सा संग परापद, तिन पेट दुर्मद खोई, तिन की तूर नानक दास बांछ है, जिन हर नाम हृदय परोई। सोरठ महला पंजवा, जन्म जन्म के दुख निवार, सूखा मन साधार, दर्शन पीड़ित होत निहला, हर का नाम विचार, मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देव है, काटे जमकी फंदा रहाओ। समर्थ पुरख पूर्ण विधाते, आपे करने हारा, अपना दास हर

जन की लाज रखाई, साध संगत तेसा फल पाए, सदगुर कै बल जाय, हलत पलत पव दोवें सवारे, हमरा गुण अब गुण ना बिचारिया, अटल बचन नान गुर तेरा, सबल कर मस्तक तारिया। सोरठ महला पंजवा, जी जंत्र सब के की है, सोई संसगाई, अपने सेव की आपे रख, पूर्ण पई बड़ाई, पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल, गुर पूरे पूरी सब राखी, होए सर्ब दयाल। अरहाओ अन दिन नानक नाम तिहाए, जी प्राण का दाता, अपने दास को कंठ लाए राखे, जो

सदगुर प्रसाद मिल पंचो नी सहसा चुकाया सिगदारो ने पतियाया उमरावो आगे तेरा मिल राजन राम न बेरा अब ढूंढन कतो न जाई गोविंद पेटे गुर गोसाई रघाओ आया प्रव दरबारा ता सगली मिट्टी पुकारा लभद अपनी पाई ता कत आवे कद जाई ते साच न्याय नबेरा ऊखा समठा गुर समचेरा अंतर जामी जाने बिन बोलते आ पछाने सर्व थान को राजा ते अनहद शब्द अगाजा तिस पै क्या चतराई मिल नानक आप गवाई सोरठ महला पंजवा हिरदय नाम साय हो कर बैठे गुरु त्याय हो गुर पूरे सद कहया सो सुख साचा लहया अपना होयो गुर मेहरवाना आनंद सुख कल्याण मंगल स्यों कर आए कर सिनाना रहाओ साची गुर वडियाई ताकि कीमत कह न जाई सिरसाहा पातशाहा उर पेड़ मन ओ माहा सगल पराजित लाथे मिल सा संत कै साथे गुण निदान हर नामा जप पूर्ण होए कामा गुर कीनो मुक्त द्वारा हलसट करे जयकारा नांग पा मेरे साथे जन्म मरण पै लाथे तोरठ महला पंजवा गुर पूरे कृपा तारी प्रा पूरी लोच हमारी कर स्नान गृह आए अंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिये उठत बैठत हर हर त्याईये आन दिन सुकृत करिये रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड़ पागी पाए कोड जन्म के किल विखनासे हर चरणी चित लाए उस्त करो सदा प्रवे अपने जिन पूरी कल राखी जी जन सब पय पवित्रा सतगुर की सच साखी बिघन मिनासन सब दुख नासन सतगुर नाम दृढ़ाया खोए पाव पय सब पावन जन नान सो कर आया सोरठ महला पंजवा साहिब गुनी गहेरा कर लस्कर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला सब जी पय दयाला जाप अंदर हो गुर चरणा पौ कते नहीं प्रसरणा अरहाओ तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभ अवचल नीब उसारी बाल कन तकिया तेरा तू पार उठा गुरु मेरा जिन जिन सा संग पाया तो प्रभ आप तराया कर कृपा नाम रह दिया फुजल खेम सब तिया होए प्रभु सगाई सब उठला गी पाई सास सास प्रत्याई है हर मंगल नानक गाईये सोरठ महला पंजवा सोग सहज आनंदा प्रा मिलियो मन पाबंदा पूरे गुर कृपा तारी तांगल पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहत बिना रघाओ हर चरण की ओर सतानी सचू की कान लुकानी जग जीवन दाता पाया हर रसक रस गुण गाया प्रकाट्या जमका फासा मन पूर्ण होई आसा जय पेखा तै सोई हार प्रभ अवर न कोई कर कृपा प्रवराखे साब जन्म जन्म दुख लाथे निर्भव नाम त्याया अटल सुख नानक पाया सोरठ महला पंजवा ठाण पाई करतारे ताव छोड़ गया परवारे गुर पूरे है राखी सरन सचे की ताकी परमेश्वर आप हुआ रखवाला सांत सहज सुखिन में उबजे मन हुआ सदा सुखाला रहाओ हर हर नाम दियो दारू तिन सगला रोग बिदारू अपनी कृपा थारी तिन सगली बात सवारी प्रभ अपना बिरद समारिया हमरा गुण अब गुण ना बिचारिया गुर का सद पयो साखी तिन सगली लाज राखी बोलाया बोली तेरा तू साहिब गुणी गहेरा जप नानक नाम स साखी अपने दास की पैज राखी सोरठ महला पंजवा विधकर्ता पुरख खलोआ वाल ना विंगा हुआ मज्जन गुर अंधा रासे जप हर हर किल खनासे।

पार ब्रह्म निभागी पूरी, ताई बात न रहिया उरी। गुर चरण लाए निस्तारे, हर घर नाम सुम्हारे। अपने दास का सुधार खवाला, कर कृपा अपने कर राखे। मात पिता जो पाला रखाओ, वड़ भागी सतगुर पाया। जिन जमका पंथ मिटाया, हर भगत पाए चित लागा। जब जी वैसे वड़ भागा, हर अमृत बाणी गावे। साधा की तूरी नहावे, अपना नाम आपे दिया। प्रवकरण हार रख लिया, हार दर्शन प्राण आधारा। क्यों पूर्ण विवन विचारा, हर कृपा अंतर जामी। दास नानक शरण स्वामी, सोरठ महला पनवा। गुरपूरे चरणी लाया, हर संग सहाई पाया। जय जय गीता सुहेले, हर कृपा पा मिले। हर गुण गावो सदा सुभाई, मन चिंदे सगले वल पावो। जी कै संग सहाई ही रखाओ, नारायण प्राण आधारा। हम संत जनारे नारा, पतत पुनीत कर लीने। कर कृपा हर जस दीने, पार ब्रह्म करे प्रतपाला। सा जी संग रखवाला, हर दिन रैन कीर्तन गाइये। बौड़ न जोनी पाइये, जे देवै पुरख विधाता। हर हस्ते नहीं जाता, जम कंकर नेड़ न आया। सुख नानक सरणी पाया, सोरठ महला पंजवा। गुरपूरे कीती पूरी, प्रव रव रया पर पूरी। खेम कुशल पया इसनाना, पार ब्रह्म मिट्टो कुरबाना। गुर के चरण कवल तारे, बिघन ना लागे तिलका कोई। कार्य सगल सुवारे, हरहाओ मिल साधु दुरमत खोए। पादत पुनीत सब होए, रामदास सरोवर नाते। सबला थे पाप कमाते, गुण गोविंद नित गाइये। सा संग मिल त्याइये, मन बांछित फल पाए। गुर पूरा हृदय ते आए, गुर गोपाल आनंदा। जप जप जीवे परमानंदा, जन नानक नाम ते आया। प्रभ अपना बिरद रखाया, राग सोरठ महला पंजवा। दैद सदन मेघ कटा काट, दामन चमक डरायो। सेज अकेली नींद नौ नैन, तिर परदेश सिधायो। हुण नहीं संदेश रो मायो, एक उसरो सिद्ध करत लाल। तब चतर पात्रो आयो रखाओ, क्यों बिसरे यो लाल प्यारो। सर्व गुणा सुखदायो, मंदिर चर के पंथ निहारो। नैन नीर पर आयो, हो पीत पयो है बीचो। सुनत देश निकटायो, पांबीरी के पाद पर दो। बिन पेखे दूर आयो, पयो कृपाल सर्व को ठाकुर। सगरो दुख मिटायो, कहो नानक होम में पीत गुर खोई। तौ दयार बीठ लो पायो, तब रहो अंधेश्वरो मायो। जो चाहत सो गुरु मलायो, सर्व

संतो सुख हुआ सब ताई, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर हरा भरे आ सबनी जाई रखाओ। तुरकी पाणी आई इन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखाना। सोरठ महला पंजवा, ऐथे उथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला, दास अपने आप राखे हड़कड़ शब्द सुपाखे।

ठगोरी लाती संग मिला लिया मेरे करत संत साध पैसा थी कर गए लीने सरपस दीने आपे आप मिलाया को नानक।

कौन कर्म विद्या को कैसी, कर्म कौन हुन करई, कौन नाम गुर जाके सिमरै, हर सागर को तरई, कल में एक नाम कृपा निध, जाहे जपे गद पावे, और तर्मता के सवनाहन, हे विद वेद बतावे, सुख दुख रहत सा निर्लेपी, या को कहत गुसाई, सो तुम ही मैं बसे निरंतर, नानक दर्पण न्याय, सोरठ महल्ला नाम, माई मैं केवद लखो गुसाई, महामो अज्ञान तिमर, मो मन रहो उरझाई रहाओ। सागल जन्म परम ही परम खोयो, न अस्थिर मद पाई, विख्या सकत रहो निस्बासर, न छूटी अदमाई, सा संकब हू न कीना, न कीर्त प्रगाई, जन नानक मैं नाय को गुण, अराख लिहो सरनाई, तोरठ महला नाम, माई मन मेरू बस नागे, निस्बासर विखेन को तावत, के बदरो को तागे रघाव, वेद पुराण सिमरत के मासुन, निमखन ही ये बसावे, पर थान पर दारा सुमरच्यो, बिरथा जन्म सिरावे, मदमाया के पयो बाबरो, तू इतने कस ज्ञाना, कड़गी पीतर बस्त नरंजन, ताको मर मना जाना, जबगी शरण साध की आयो, दुर्म सगल बिनासी।

तार सगल जगत है जैसे सुबना बिनसद लगत न बार रखाओ बारू पीत बनाई राजपत रहत नही दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उर्जो खां गवार अजहू समझ अज बिगड़ो नाहिन ताज ले नाम मुरार कहो नानक रिज मत साधन कहो वाख्यो तोय पुकार चोरठ महला नावा ए जग मीत ना देखियो कोई सागर जगत अपने सुख लागे हो दुख में संग न होई रहा दारा मीत पूसन बंदी फगरे तन स्यों लागे जल ही निरतन देखियो नरको संग शाड़ सा पागे कहो का या मन भौरे कहो इनसे उन्हें लगायो दीना नाथ सगल पै पंजन जसता को बिसरायो स्वान पूजो पयो न सुध बहु जतन मैं कीनो नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहारो लीनो सोरठ महला नामा मान रे गयो न गुर उपदेश हां पयो जो मूड मुंडायो भगवो कीनो भेस रखाओ ता छाड़ के झूठे लागो जन्म अकारथ खोयो कर पर पंज उधर ने पोखयो पास की न्याई सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया घात बिकाना उर्ज रहो बिखियन संग बौरा नाम रतन बसराना रहो चेतना चेत्य गोविंद फिरता आओ सिरानी हो नान घर बिरद पछानो उल्ले सदा परानी सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने भुख सुने वर पै नहीं जाके कंचन माटी मान है रगाओ नैन दया ने उस्त जाके लोभ मोह अभमाना हर्ग सोते रहे नियारो नाय मान अपमाना असा मनसा सगल त्याग।

सागर तो बैरागी सबन वेद्या मेरी माई अंतर जोत निरंतर बाणी साचे साहिब स्यों लिवलाई रहाओ। असंख बैरागी कह बैराग सो बैरागी जे खसमे पावे हिरदे शब्द सदा पै रचिया गुर की कार कमावे एको चेते मनुआ ना डोले आवत वर्ज रखावे सहजे माता सदा रंग राता साचे की गुण गावे मनुआ पौन बिन सुखवासी नाव से सुख पाई जेबा नेत्र सोतर।

पूर्ण हुई आस गुरचरणी मन रते गुर किरपाल बेअंत अवगुण सब हते गुर अपनी किरपा तार अपने कर लेते नानक सद बलिहार जिस गुर के गुण इते सलोक महला पहला ता की रिजाए लिखिया पाए अब क्या कीजे पांडे हुक्म हुआ हासिल तदे हुए निबड़िया अंडे जी कमांदे महला दूजा नक नथ खसम हथ किरत थके दे जहां दाने तां खाने नानका सच हे पौड़ी सबे गल्ला आप थाड़ बहालियून आपे रच नरचाए आपे ही कालियून आपे जंत्यो पाए आप प्रतपालियून दस रखे कंठ लाए नदर निहालियून नानक भगतां सदा आनंद पाओ दूजा जा लियून सलोक महला तीजा ए मन हर जी प्याए तू एक मन एक चित पाए हर किया सदा सदा वडियाईया दे ना पछोताए हो हर के सद बलिहारण जित सेवे सुख पाए नानक गुरमुख मिल रहे होमे शब्द जलाए महला तीजा आपे सेवा लायन आपे बख्श करे सबना का मां प्यो आप है आपे सार करे नानक नाम ध्यान तिन करवा सके जुग जुग सोभा होए पौड़ी तू करण कारण समर्थ अहे करते मैं तुझ बिन अवर न कोई तुझे आपे सिट सिर जिया आपे फुन गोई ताबे को शब्द वर्तदा जो करे सोई वडियाई गुरमुख दे प्रभ हर पावे सोई गुरमुख नानक आराध्या सब आखो तन तन तन गुरसोई शुद्ध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बुत पूज पूज हिंदू मुए तुर्क मुए सिर नाई उले जारे उले गाडे तेरी गद दुहू ना पाई मन रे संसार अंध गहेरा चौध पसरे हुए जम जेवर आ रहा कवत पड़े पड़ कविता मुए कपड़ केदारे जाई जटा थार तार जोगी मुए तेरी गत इने ना पाई दर्ब संत संजराजे मुए गडले कंचन पारी वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी राम ना बिन सबे बगूते देखो निरख शरीरा हर के ना बिन किन गद पाई है उपदेश कबीरा जब जरिगे तब होए पसम तान रहे किरम दल खाई काची गागर नीर परत है या तन की एह बड़ाई अहे पैया फिर तो फूलिया फूलिया जब दस मास उर्द मुख रहता सो दिन कैसे फूलिया रहा जो मधमाखी क्यों सठोर रस जोर जोर तन किया मरती बार लिहो लिहो करिए भूत रहन क्यों दिया ब्योरी लो बरी नार संग पई आग गए सजन सुहेला मार कट लो सब लोग कुटम पयो आगे हंस अकेला कहे तो कबीर सुनो रे पानी परे कागरस गुआ झूठी माया आप बंधाया जो नलनी परमसुआ वेद पुराण सबे मत सुन कर करी कर्म की आसा काल ग्रसब लोग सियाने उड़ पंडित पै चले निरासा मान रे सरयो ना एक काजा पजो ना रघुपति राजा रहाओ बाण खण जाए जोग

ही अब बेगल कहन न जाई। हमारा परम गया पहु पागा, जब राम नाम चित लागा रहाओ। बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमाशे आई। बाजीगर स्वांग सकेला, आपने रंग रवे अकेला। कथनी कह परम न जाई, सब कथ कथ रही लुकाई। जाको गुरमुख आप बुझाई,

अणमड़िया मंदल बाजे मेरे सामन कनहर गाजे बादल बिन बरखा होई जाओ तत विचारे कोई मोको मिले राम स्नेही जे मिले देश सुदेही रखाओ मिल पारस कंचन होया मुख मनसा रतन परोया ये पाओ गया परम पागा गुर पूछे मन पति आगा जल पीतर कुंभ समानिया सब राम एक कर जानिया गुर चेले है मन मानिया जन ना मैं तत पछानिया राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं नाही अनल अगम जैसे लहर मैं ओदध जल केवल जल माही माधवे क्या कहिए प्रमेयस जैसा मानेंगे होए न तैसा रहाओ नरपद एक सिंहासन सोया सुपने पया पिकारी अशतराज विशरत दुख पाया सो गल पई हमारी राज पुयांग प्रसंग जैसे है अब कछ मर्म जनाया अनक कटक जैसे फूल परे अब कहते कहन न आया सर्वे एक अनेक स्वामी सब कट भुगवे सोई कहे रविदास हाथ पहने रह सहजे हुए सुहोई जो हम बांधे मोह फास हम प्रेम बंधन तुम बांधे अपने शूटन को जतन करो हम शूटे तुम आराधे माधवे जान हो जैसी तैसी अब कहां करोगे ऐसी रहाओ मीन पकड़ फांक्यो अर काट्यो रांध कियो बहुबानी खंड खंड कर पूजन कीनो तऊ न बिसरो पानी आपन बापे नाही किसी को पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत व्याप्यो भगत नहीं संतापा कहे रविदास भगत एक बाडी आप ही कासो कहिए जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अजहू सही दुलाभ जन्म पुण्य फल।

चारो राजा राम को रास दे रस अनस बिसर जाही रहाओ। जान अजान पै हम बावर सोच असोच दिवस जाही। इंद्री सबल निबर विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं। तैयत आन अचरित अनकश समझना परे अपर माया। कैरवदास उदास दास मत पार हर कोप करो जी दया। सुख सागर सुर पर चिंता मन काम तीन बस जाके। चार पदार्थ अष्टदशा सिद्ध नवद करतल ताके। हर हर हर ना जपे रसना अवर सब त्याग बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान पुराण वेद विद चौतीस अखर माही। व्यास विचार कयो परमार्थ राम नाम सरनाही। सहज समाज उपात रहित फुन बड़े पग लिव लागी। कहे रविदास प्रगास हृदय तार जन्म मरण पै भागी। जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम

पीत पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बिचारा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ राखो कंध उसारो नीवा साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा बंके बाल पाग सिर डेरी यो तन हुए को पसम की ठेरी ऊंचे मंदर सुंदर नारी आराम नाम बिन बाजी हारी मेरी जात कमीनी पांत कमीनी ऊंचा जन्म हमारा तुम शरणागत राजा रामचंद कहे रविदास तुम्हारा चमरटा गांठ न जनई लोग ठावे पन ही अरहाओ आर नहीं जे तो पो नहीं रामबी ठाओ रूपो लोग गंठ गंठ खराबे गुचा हो वे गंठे जाए पहुचा रविदास जपे राम नामा मोहे जमसु नाही कामा राग सोरठ बाणी भगत भीखन की एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद नैनो नीर बहे तन कीना पय किस दुधवानी रुदा कंठ शब्द नहीं उच्चरै।

सास मास तब जीव तुम्हारा तुम्हें करा प्यारा। नानक साहिब एव कहत है सच्चे पर्वत गारा। जे तू किसी ना देही मेरे साहेबा क्या को कड्डे गहना। नानक बिन वै सोग छिपाई है पूर्व लिखे का लहना। नाम खसम का चेतन किया कपटी कपट कमाना। जाम द्वार जा पड़ चलाया ता चलदा पछताना। जब लग दुनिया रही गई नानक किस सुनिए किस कहिए। पाल रहे हम रहन न पाया जीव त्या मर रही है। तनासरी मोहल्ला पहला कर दूजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए। तपे आओ जीड़ा बिल लाए फिर जसवारे साचा सोए। तिस विसरे चंगा क्यों होए हिकमत हुक्म न पाया जाए। क्यों कर साथ मिलो मेरी माए रखाओ वखर नाम देखण कोई जाए। ना को चाखे ना को खाए लोग बतीने ना पत होए। ता पत रहे आराखे जा सोए जै देखा तै रहा समाए। तुद बिन दूजी ना ही जाए जे को करे कीते क्या होए। जिसनु बगसे साचा सोए हुन उठ चलना मोत के ताल। क्या मोह दिसा गुण नहीं नाल जैसी नदर करे तैसा होए। बिन नदरी नानक नहीं कोए तनासरी मोहल्ला तीजा। नदर करे ता सिमरिया जाए आत्मा द्रवे रहे लिवलाए। आत्मा प्रात्मा एको करे अंतर की दुबदा अंतर मरे। गुर प्रसादी पाया जाए हर सुचित लागे तिर काल ना खाए रहाओ। सच सिमरे होवे प्रगास ताते बिखिया महे उदास। सतगुर की ऐसी वड्याई उत्तर कलतर विचे गद पाई। ऐसी सेक सेवा करे जिसका जीव तुझ आगे तरे। साहिब पावे सो परवान सो सेवक दरगे पावे मान। सतगुर की मूर्त हृदय वसाए जो इच्छा सोई फल पाए।

आग साच रते अहे निस बैराग क्यों जुग में अमृत साची बाणी पूरे पाग हर नाम सुमाणी सिद्ध साधक तरसे सब लोए पूरे पाग प्राप्त होए सबके साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए नानक आपे वेखे आपे सच लाए तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही न जाए से जन तन जिन एक नाम लिवलाए गुरमत साची साचा विचार आपे बगसे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूर्ख मूर्ख मन माहे होमे विच सवकार कुमाहे गुर प्रसादी होमे जाए आपे बगसे लए मिलाए बिखिया का धन बहुत अभमान अहंकार डूबे ना पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत साला ही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर न कोए जिस सच लाए सुई लागे नानक नाम सदा सुख आगे राग तनासरी महला तीजा कार चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम भीख पेखारी तेरे तू निज पत है।

ऐसी बगस करीजे पंत नानक परम पड़ खूले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर स्यों मन मानिया।

अदृष्टा गोचर अपरंपर स्वामी पुर पूरे प्रगट कर दीने राम पास चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरी सत संग पए हर कंचन चंदन कीने रहाओ। नव शेख खट बोले मुख आगर

सो है दरबारे सर्ब जिया के दाते स्वामी कर कृपा लिओ उबारे तेरा वर्ण न जाप रूप न लखिए तेरी कुदरत कौन बिचारे जल थल मैल रविया सब ठाई आगम रूप गिरधारे कीर्त करे सगल जन तेरी तू

हेत बढ़ायो कामल हेत बिन सो गए पवरा उन मार्ग निकस न पायो आप मान एक स्यो मोकीना मरे न जावे सदगी संगे सदगुर सबदी चीना रहाओ काम हिर कुंतर लय फांक्यो ओ पार बस पयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उस ही हेत बिदारा दे कुटंब लोभ मोयो प्राणी माया कौल बटाना अतरच्यो कर लीनो अपना उन शोर सरा पर जाना बिन गोबिंद अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुखेला कहो नानक गुर एह बुझायो प्रिय प्रभु सदकेला तनासरी महला पंजवा कर कृपा दियो मोहे नामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा गुर की चरणी लाए साध संग चिंत बैरानी छाडी अंग बुद्ध मोह मन बासन दे कर गढ़ा गाडी रगाओ ना को मेरा दुश्मन रहया नाम किसके बैराई ब्रह्म पसार पसायो पीतर ता गुर ते सोजी पाई सब को मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन दूर परायो मन का बिरगा ता मेल कियो मेरे राजन बिन सो ठीठा अमृत रूठा तब्द लगो गुर मीठा जल थल मैयल सर्ब निवासी नानक रमैया डीठा तनासरी महला पंजवा जब ते दर्शन पेटे साधु पले दिनस ओए आए मां आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए अब होए राम जसो मन गायो पयो प्रगास सदा सुख मन में सदगुर पूरा पायो रहाओ गुण निधान दिल पीतर वसया ता दुख परम पौ पागा पई प्राप्त वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा चिंत अचिंता सोच असोचा सोग लोभ मोथा का होमे रोग मिटे कृपा ते जमते पए बिबाका गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पानी कहो नानक जिन जमते काढे इस गुर कह कुरबाणी तनासरी महला पंजवा जिसका तान मन तान सब किसका सोई सुड़ सुजानी तिनही सुनिया दो सुख मेरा तौ विदनी की खटानी जी की एक ही पैमानी आवर जदन कर रहे बहुत तेरे तेन तिल नहीं कीमत जानी रगाओ अमृत ना

तार महें फिर सीधा मार्ग दिखाया। हमरे प्राण गोपाल गोविंद ईगा ऊहा सर्व थोग की जिसे हमारी चिंद रहाओ। जाके सिमरन तरब निधाना मान महत पद पूरी नाम लैद कोड़ अगनस भक्त बाचे सब तूरी। सर्व मनोरथ जे को चाहे सेवै एक निधाना पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी सिमरत पार पराना शीतल सांत महा सुख पाया संत संग।

चंदन लेप होर देखो सो गर्द पसम संगीत अमृत संग नाहे रुचि आवत विखेठ गौरी प्रीत उत्तम संत पले संजोगी ए जुग में पवित पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ ताज बद रहे जीत जन्म जन्म के किल विघ दुख फागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुते निकसियो नानक एक प्रीत तनासरी महला पंजवा पानी पखा पीसो संत आ गए गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समारे क्यों विश्राम निध पाई।

पतत पामन गोसाई, कोर सूख आनंद विराज पाए, मुक्ते निमुख बुलाई, जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभु के मन पाई, नाम जपत तृष्णा सा बुझी है, नानक तृप्त अघाई। तन्हा श्री महला पंजवां, जिन कीने वसे अपने त्रै गुण,

साल प्रसाद हर हर हर गाय विखे ब्याल तब हुटो अरहाओ न सुनिए न मुक्ते बकिए न मोहे ओ डिठी ऐसी ठगौरी पाए पुलावे मन सबके लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेल्यो दुआ किसी वाद काड किसी पै सगले लर लर मुआ औंबलेगारी सतगुरे अपने जिन यो चलत दिखाया गूजी पाए जले संसारा भगत ना व्यापे माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन का।

खंड हो अनकबीरी समझाव हो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुमगी सजन सुहेले रखो रखन हार दयाला नानक करके गोले तनासरी महला पंजवां पूजा वर्त तिलक इस नाना।

दुतिया पाओ निवार, बंधन काट लेओ अपने कार, कभू न आवे हार। तेरी शरण पया हो जीवा, तू समरथ पुरख मेहरबान। आठ पहर प्रभु को आराधी, नानक सद कुरबान। राग तनासरी महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। हा हा प्रभ राख ले हो, हम ते किशु ना होए मेरे स्वामी। कर कृपा अपना नाम देहो, रहाओ अगर कुटुंब सागर संसार।

दयाल सुंदर सुगर बेअंत पिता प्रभ हो प्रभु कृपाल रहाओ। मां आनंद मंगल रूप तुमरे भजन अनूप रसाल हिरदे चरण सब सगुर को नानक बंद उपाल। तनाशरी महला पंजवा अपने उद खिलावे भोजन अपने उद खिलावे सर्ब सुख हो रस देव मन की नाल समावे। हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखे महतारी बारक कहो तैसे ही प्रपाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कद तद तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला पंजवा संत के पाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिखजारे राज माल जोबन तन जीरा इन ऊपर लय बारे। मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहित पनद पार उतारे रहाओ। तन सो थान तन ओए भवना जा मैं संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवा छड़ाए लियो महाबली ते अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता बिरस न कतहु जात सगुर पूरे कीनी दात हर घर नाम दियो।

चरण गए प्रव्यापने सुख पायो दिन रात तनासरी महला पंजवा पर हरना लोभ चूड़ निंद ए भी करत गुदारी मृत्यु न आस मिथ्या मीठी ए टेक मने साधारी सागत की आवरदा जाए बिरतारी जैसे कागद के पार मूसा टूक गवाव काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी बूढ़ अंध नान प्रकाड़ साध जना संगारी तनासरी महला पंजवा सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना शीतल तन मन शाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी

सास सास प्रतपाले प्रभु स्यों लाग रहे हो मेरा चीत आद अंग प्रसदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ मन बिलाल पए साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रपूर्ण पैज रखाई तनाश्री महला पंजवा जिसको बिसरे प्राण पादाता सोई गरों अपागा चरण

जाम रहाव सिमर सिमर स्वामी प्रव्यपन निट न आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पाए उहर का ताम चरण कमल हर जन की थाती कोड़ सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वस संतन का संग पावो सो अगर मैं मानना व्यापे आड़ पैर गुण गाओ स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मध्यान्त प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर।

पतत उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उच्चारण अंत पायो गुणे सुख सागरा ब्रह्मत नागरा भगत वच्छल नानक गायो तनासरी महला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो।

अनिस्तारा समुद्र सागर जिन खिन में तारा रहाओ। कोई हो आक्रम रत कोई तीर्थ नाया दासी हर का राम ते आया बंधन काटन हार स्वामी जन नानक सिमरै अंतर जामी।

साधो यो जग परम भोलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता पाई सुध बनता

प्रेम भगत कर सहज समाय, सर्वमय हंस हंसमय सागर, अकत कथा गुरु बचनी आदर। सुन मंडल एक जोगी बैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे, तिर पवन जो तरहे लिव लाई, तुर नर नाथ सचे शरणाई। आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरमुख भगत सहज बिचारी, भगत वशल पे काटन हारे, होमे मार मिले पगतारे। आनक जन कर काल संताए, मन न लखाए मंडल में आए, जन्म पदार्थ दुविधा खोवे, आप न चीनस प्रम प्रम रोवे, है तो पढ़तो सुन तो एक, तीर्ज धर्म तरणी तर टेक, जात सा संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल ना लागे, गुर कै शब्द परम पौ पग, तूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे साज स्वरूप, तनासरी महला पहला, सहज मिले मिले या परवान, नाथ स्मरण न आवन जान, ठाकुर मैं दास दास मैं सोए, जय देखा ते अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाइये, बिन गुर फेटे मर आइये जय।

तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, दस पुरब सदा दसारा, औ नाम हर का सदा जाचो, दियो प्रतरणी तरा, संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना, पुरवाक निर्मल सदा चानन।

माया मोह जलाए प्रीतम रसमय रंग करेई, प्रभु सचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी। नानक साच वसी सोहागण किरस्यों प्रीत प्यारी, फिर कर सोहे नार।

जो होई इंद्र लोक शिव लोक के जेबो उसे तब कर बाहर आयो क्या मांगो सिर नाही राम नाम रख मन माही रखाओ सोभा राज विभय बड़ियाई अंत न काहू संग सहाई पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया इनते कहो कमने सुख पाया कहे तो कबीर अवर नहीं कामा अमरे मन थन राम को नामा राम सिमर राम सिमर राम सिमर पाई राम नाम सिमरन बेन बूढ़ते अदकाई राव बंता सुधे गृह संपद सुखदाई इनमें कुछ नागे तेरो काल अवध आई अजामल गजगन का पद कर्म कीने ते उत्तर पार परे राम नाम लीने कूकर कूकर जोन परमे तऊ लाजना आई राम नाम शाड अमृत काहे बेख खाई तज परम कर्म विदन खेद राम नाम लेही गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही।

नीव खुदाई ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अदकाई जिन त्रेण थर मूंड बलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्व करत हो बिरस जाए झूठी देही हरहाओ मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से पाई पारे जोजन छत्र चले था देही गिरज ना खाई सर्व सोयन की लंका होती रावण से अदकाई कहां पयो दर बंदे हाथी खिर में पई पराई दुर्वासा करत ठगोरी यादव ए फल पाए कृपा करी जने अपने ऊपर नाम जो हर गुण गाए तस बय रागन मोए बस कीनी पंचो का मिट नावो सत्र दोए परे अमृत सार बिख को मार कढावो पाचे बौर न आवन पावो अमृत बाणी कढ़ते उचरो आत्म को समझावो रहाओ बजर कुठार मोए है शीना कर मिनत लग पावो संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो ये संसार ते तब ही छूटो जो माया नहीं लपटावो माया नाम गर्भ जोन का ते ता दर्शन पावो इत कर पगत करे जो जान तेन पौ सगल चुकाइये कहत नाम दो बार क्या परम हो ए संजम घर पाइये मार वाड़ जैसे नीर बाल बेल बाल कर ज्यो कुरंक निसनाद बाल त्यो मेरे मन रामैया तेरा नाम रूढ़ो रूप रूढ़ो अतरंग रूढ़ो मेरो रामैया अरहाव जो तरणी को इंद्र बाल कुसुम्बा जैसे पवरला ज्यो कोकल को अंब बाल त्यो मेरे मन रामैया चकवी को जैसे सूर बाल मान सरोवर हंसला ज्यो तरणी को कंत बाल त्यो मेरे मन रामैया पार्ग को जैसे खीर बाल चात्रक मुझ जैसे जल थरा मछली को जैसे नीर बाल त्यो मेरे मन रामैया साधक सिद्ध सगल मुन चाह है बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरु नाम बाल त्यो नाम में मन बीठला पहल पुरगे पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानऊ हर घर नचंती नचना पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचे पिंदी मैं सागरा रहाओ नाचंती गोपी जन्ना नैया ते बैरे कन्ना तर्क नाचा प्रमिया चा

तनाश्री भगत रविदास जी की एक ओंकार सदगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अपतियार क्या कीजे पचनी तोर मोर मन मन जन को पूर्ण दीजे हौ बल बल जाओ रमैया कारण कारण कमन अबोल अरहाओ बहुत जन्म बिछरे थे माधो यो जन्म तुम्हारे लेखे कहे रविदास आस लग जीवो किरपयो दर्शन देखे चित सिमरन करो नैन अवलोकनो सरवन बाणी तुजस पूर राखो मन सुमद कर करो चरण हिरदे धरो रसन अमृत राम नाम पाखो मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन कटे मैं तो मोल महगी लई जी सटे परहाओ सा संत बिना पाओ नहीं उपजे पाविन भगत नहीं होए तेरी कह रविदास एक बेनती हर सिंह पैज रखो राजा।

हमरा खुशी करे नित जियो, पनिया छत नीका, अनाज मंगो सत सीका, कऊ पैस मंगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी, करकी घीघन चंगी, चन तन्ना ले वै मंगी, जैत

हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले तो गुर अंचल दीजे जन नानक चले मिलनता। जैत सरी महला चौथा हीरा लाल अमोल कहे पारी बिन गाक मी का काखा। रतन गा गुर साधु देखे हो ताब रतन बिका नोन लाखा। मेरे मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा। हरहाओ मानमुख कोठी अज्ञान अंधेरा तेन का रतन लाखा। ते उजड़ परमु एका वारी माया पोयंग बिख चाखा। हर घर साग मिलो जननी के हर साधु शरण हमाराखा। हर अंगीकार करो प्रस्वामी हम परे पाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आख वखाण है तुम वड़ अगमड़ पुरखा। जन नानक हर कृपा तारी पाखान डुबत हर राखा। जैत सरी महला चौथा अंबार कशु ना जाने गातमित तेरे मूर्ख मुगद एयाना। हर कृपा तार दीजे मत ऊतम कर लीजे मुगद सयाना। मेरा मन आलसिया उगलाना। हर घर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपट।

आपे सदगुर समुंद मथाहा आपे मथ मथ तत कढ़ाए जप नाम रतन ओ महाराम सखी मिलो मिल गुण गावाहा गुरमुख नाम जपो हर लाहा हर घर पगदड़ी मन पाई हर घर नाम ओ महाराम आपे वरदाना वरसह गुरमुख पूंजी नाम सहा हर घर दाद करो प्रभावे गुण नानक नाम ओ महाराम जैत श्री महला चौथा मेल ससंगत संग गोराहा पूंजी नाम गुरमुख वे साहा हर घर कृपा तार मधुसूदन मिल सत्संग ओ महाराम हर गुण।

अहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरव जब प्रभ कहो गुर प्रसाद नानक मन वसया दुख न कबहू चूरव पुज प्रभ कहो जय तसरी महला पंजवा लोड़ींदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके कर कर तसे बसेरा अरहाओ दुख आराधन दुख आराधन बिसरे ना काहू बेरा नाम जगत कोड सूर उजारा बिरसे परम अंधेरा थान थनंतर सब नहीं जाई जो दिसे सो तेरा संत संग पावे जो नानक जिस बौर न होई है फेरा जय तसरी महला पंजवा कार चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद आव मैं सुख पायो गुर आग तजी स्यान बचिंत सारी अंग छोड़ हो गए त्याग रहाओ जो देखो तो सगल मोय मोहियो तो शरण परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जब छोड़ी मोहरी लाग तेरे ओ सागर पावक को जो संत फेटे वड़ भाग जन नानक सर्व सो पाए मोरो हर चरणी चित लाग जय तसरी महला पंजवा मन में सतगुर ध्यान धरा त्रिड़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभु जीव माया करा अरहाओ काल जल अरमा जंजाला छुड़के जमे डरा आयो दुख हरण शरण करना पत कयो चरण आसरा नाव रूप पयो सल संग पंध पार परा आप्यो पियो गातियो परमा कहो नानक अजर जरा जय तसरी महला पंजवा जाको पहे गोविंद सहाई दुख सहज आनंद सगल स्यों वाको व्याध न काई रहाओ दिसे सब संग रह अलेपा न व्यापे उन्माई एक रंग तत के बेते सदगुर ते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकुर की से ही संत सुखाई तिनके संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई जय तसरी

जिस बिसरत तन पसम होए, कहते सा प्रेत खिन गिर में बसन न देवही, जिनस सोई हेत कर अनर्थ दर्भ संचया, सो कार्ज केत जैसा बीजे सो लुणे, तर्म यो खेत अकिरत कणा हर विस्तरिया, जोनी परमहेत सलोक कोट दान स्नानंग, अनक सोदन पवित्रता उचरंत नानक हर हर रसना, सर्व पाप विमुचते ईदन की तो मूकणा, ओरी दतीम पावे मानव संद्रो सच सहो, नानक हब्बे डुखड़े उलाहे पौड़ी, कोड़ अगा सब नास होए, सिमर तर नाओ मन चिंदे फल पाईए, हर के गुण गाओ जन्म मरण पै कटिए, निचल साथाओ पूर्व होवे लिखिया हर चरण समाओ, कर कृपा प्रभ राख लेहो नानक बल जाओ, श्लोक गृह रचना अपारंग मन बिलास स्वादंग रस, कंदाच ने स्मरंत नानक ते जंत दिष्टा क्रिम, मुझ अडंबर हब के हो मंज मोहब्बत नेह, तो साई जय विसर नानक सो तन खेह पौड़ी, सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे, गृह सोन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे, मन इच्छे सुख मानद इस नाये विसूरे, तो प्रचितन आवई विष्टा के कीरे, बिन हर नाम ना सांत होए किद विद मन तीरे, श्लोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दह दिस, त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग में, मन साई मुख उचरा वत्ता हब्बे लो, नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी, बस्ता टूटी चुंपड़ी तीर सब छिन्ना, जात ना पद ना आदरो उद्यान पर मिन्ना, मित्र ना इड़तन रूपहीन किज साक ना सिन्ना, राजा सगली सिटका हर नाम मन पिन्ना, तिसकी तूड़ मन उदरे प्रभ होए सो प्रसन्ना, श्लोक अनक लीला राज रस रूपं छतर चमर तख्त आसनं, रचंत मूढ़ अज्ञान अंध नानक सुपन मनोरथ माया, सुपने हावरंग माणिया मिठा लगड़ा मोहो, नानक नाम विहूणिया सुंदर माया त्रोहो पौड़ी, सुपने से तीचित मूर्ख लाया बिस्तरे राजरस पोक जागत पखलाया, आर जा गई वेहाय तंदे ताया, पूर्ण पै ना काम मोया माया, क्या वे चारा जंत जा आप पुराया, श्लोक संत स्वर्ग लोक है जिद ते प्रथमी नव खंडन है, विसरंत हर गोपाल है नांग ते प्राणी उद्यान परमण, कौतक कोड़ तमाशे चेतन आवस नाओ, नानक कोड़ी नरक बराबर उजड़ सोई थाओ पौड़ी, महापयान उद्यान नगर कर मानिया, चूस मगरी पेख सद कर जानिया,

ओक राज कपटंग रूप कपटंग धन कपटंग कुल गर्भत है संचंत दिखिया शलंग शिद्रंग नानक बिन घर संग न चालते पेखंदड़ो की पुल तुम्मा दिस्तम सुना अड़ना लहंदड़ो मुल नानक साथ न जुलई माया।

नाद को रंग के बेदया सनम उड़तावे पवर लोभी कुसुम्बास का मिल आप बंधावे तू संत जना कर प्रीत है देख दर्श अघावे श्लोक चितवंत चरण कमलं सास सास आराधन नय विश्रांत नाम अच्युत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है सीतड़ा मन मजावे पलक न थी वे भारा नानक आसड़ी निभावे सदा पेखंदो सच तणी पौड़ी आसावंती आस कुसाई पूरी है मिल गोपाल गोविंद ना कबहु चूरिए त्यो दर्श मन चाओ ले जाए वे सूरिए कोय पवित्र शरीर चरना तूरी है पार ब्रह्म गुरुदेव सदा हजूरी है श्लोक रसना उच्चरंत नामं सर्वणं सुनंत शब्द अमृत है नांग तिन सद बलिहारं जिन्ना त्यान पार ब्राह्मण हब कूड़ा वे कम एक साई बारे नांग से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावे प्रामत्था हर्ज लिखे बेअंत सो है से हत्था चरण पुनीत पवित्र चाले प्रापत्था संता संग उधार अगला दुख लत्था श्लोक पावी अदोद करण आरमण संजोग पूर्ण है गोपाल दस फेटं सफल नांग सो मुहूर्त तीव न सकता पाए सुख मिति हु बारे नानक सावे लड़ी परवान जित मिलंदड़ो मा प्री पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई तो मूर्त पला संयोग है जित मिले गुसाई आड़ पैर घर त्याए कह मन इच्छ पुजाई वड़े पाग सत्संग होए निवलागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई श्लोक पत पुनीत गोविंद है सर्व दुख निवारण है शरण सूर भगवान है जे पंत नानक हर हर हरे छड्यो हबे आप लगड़ो चरणा पास नचड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदिया पौड़ी मेल लेहो दयाल तय पय द्वारिया रख ले वो दीन दयाल प्रमत बहु हारिया भगत विशल तेरा बिरद हर पतत उधारिया तुझ बिन नाही कोय बिनो मुझ सारिया कर गए लिहो दयाल सागर संसारिया श्लोक संत उदरण दयालं आसरं गोपाल कीर्तन निर्मलं संसंगेन ओट नानक परमेश्वर चंदन चंदन सरद रुत मूल न मिटई काम तीतल तीवे नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओर उदरे सगल जान सुन प्रताप गोविंद निरपो पये मन तोट न आवे मूल संत्या नाम तान संत जनासु संग पाइये वड़े पुन आड़ पैर हर चाहे हर जस निरसुन श्लोक दया करण दुखरण उच्चरण नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त न माया पाए बलंदड़ी बुल गई रखंदड़ो

अहंकार सदगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अवर कछु मेरे संग न चाले मिले कृपा गुण गाम रखाओ राज मार अनेक भोग रस सगल तरवर की शाम ताए ताए वो बिद को थावे सगल निरार्थ काम बिन गोविंद अवर जे चाहो दिसे सगल बात है खाम पौ नानक संतरे न मांगो।

जिसके से फिर तिन ही संभाले फिर से सोग संताप आदे राखे जने अपने हर होए माई बाप जी जंत होए मेहरवाना दया तारी हरनाथ नानक सरन परे दुख पंजन जा काबड़ प्रताप टोडी महला पंजवा स्वामी सरन परे उदर बारे कोड़ अपराध खंडन के दाते खुद बिन कौन उधारे रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाएगे माया रच बंद हारे चरण कम संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारे टोडी महला पंजवा हर तीजा चौपदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद हां हां लपट्यो रे मूड़े पशु न थोरी तेरो नहीं सो जानी मोरी रहाओ आपन राम न चीनो खिनुआ जो प्राई सो अपनी मनुआ नाम संगी सो मन ना बसायो छोड़ जाए वाहू चित लायो सो संच्यो जिद पूग तसायो अमृत नाम तोसा नहीं पायो ताम क्रोध मोह कूप परेया गुर प्रसाद नानको तरिया टोडी महला पंजवा हमारे एक हरी हरी आन अवर संजान ना करी रखाओ वड्डे पागुर अपना पायो गुरमुख हर नाम दृढ़ायो हर घर जाव ताब्रत नेमा हर घर चाहे कुशल सब खेमा आचार व्यवहार जात घर गुनिया महा आनंद कीर्तन घर सुनिया कहो नानक जिन ठाकुर पाया सब के गृह में आया टोडी महला पंजवा हर चौथा दो पदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद रूड़ो महा रंगो लोड़े काली हर नीहो ना होए रहाओ हाउ टूडेंदी दर्शन कारण बीती बीती पेखा गुरमिल परम गवाया हे एबद पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखियो तुर माते एबद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा गर्भ गैलड़ो मूड़ो ही ओ रे ही ओ महाराज री मायो तीघर न्याई मुए फाक्यो रे रहाओ कणो कणो कणो सा लोड़े बिन लैने कैठे पायो रे महाराज रो गाथ वाऊ सुन लुबड़ो ने भागड़ो पाए संजोयो रे सुन मन सीख सब जन सगलो थारे सगले प्राश्त मिट्यो रे जाको लैणो महाराज री गाठड़ियो जरनान करभास ना पौड़ो रे टोडी महला पंजवा तार पंजवा दो पदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभु जी कीन पंच दुख अर अंग रोग ए तंत सगल दूर कीन रहाओ बंधन तोर शोर बिखियाते गुर को सब मेरे ही रे दीन रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचारियो प्रेम गयो मुए हर रंग पीन पेखो लालन पाड़ बीज खोए अंध चिता हरखे

जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कोटंतर के पाप सब खोवे। हर पवजिल पार उतारा रखाओ, काया नगर बस्त हर स्वामी। हर निर्भव निर्वैर निरंकारा, हर निगट बस कछ नजर न आवे। हर लादा गुर विचारा, हर आपे सहो सराफ रतन हीरा। हर आप किया पासारा, नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे। तो सहो सचा बणजारा, पैराड़ी महला चौथा। जप मन हर निरंजन निरंकारा, सदा सदा हर त्याये सुखदाता। जाका अंत न पारा वारा, रहाओ अगन कुंट में उर्द लिव लागा। हर राखे उदर मंजारा, सो ऐसा अगर सेव हो मेरे मान। हर अंत शिडामन हारा, जाके हृदय बसया मेरा हर हर। इस जन को करो नमस्कारा, हर कृपा ते पाएगे हर जप। नानक नाम अधारा, बैराड़ी महला चौथा। जप माना

तन महल न पावे विण कर्मा किश पाइये नाही जे वो तेरा तावे। लब लोभ अंकार की माती माया माए समाणी इन्नी बाती सो पाइये नाही भई कामण एयाणी जाए पुछो सुहागणी वाहे किन्नी बाती सो पाइये जो किश करे सो भला करमानिए हिकमत हुक्म चुकाइये जा के प्रेम पदार्थ पाइये तौ चरणी चित लाइये सौ कहे सो कीजे तन मनो दीजे ऐसा परमल लाइये एव कह सुहागणी पैणे किन्नी बाती सौ पाइये आप गवाइगे ता सौ पाइगे और कैसी चतराई सौ नदर कर देख सो दन लिख कामण नौ निद पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागण नानक सा सबराई ऐसे रंग राती सहज की माती अहे निस पाए समाणी सुंदर साए स्वरूप चक।

बाद तब आए हो मुख समाहो हुक्म सा वर्तनी सच साहेब सचा खेल सब हरतनी साल आए हो सच सब ऊपर हरतनी जिस नाही कोई शरीक किस लेखे हो गनी अरहाव पौन पानी धरती आकाश घर मंदिर घर बनी विच वरत नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित निफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जब आने वाल वंच।

चेतना है तो चेतल है, निर्दिनमय प्राणी छिन छिन औद विहात है, फूटे कर जो पानी हराव हर गुण गए ना गाव ही, मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कह न मरन पछाना, आजू काज बिगड़े नहीं जो प्रभु गुण गावे, कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावे, तिलंग महला नामा जाग लेहो रे मना जाग लेहो, कहां गाफल सोया जो दिल उपजिया संग ही, सो पी संग न होया रहाओ, माग पिता सुध बंद जा हित जा सो कीना, जियो छूट्यो जब देत डार अग्न मैं दीना, जीव तलो व्योहार है जको तुम जानो, नान खर गुण गाए ले सब सुफन समानो, तिलंग महला नामा हार जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है, कहो मान ले मेरो अरहाओ, संपत रतन राश्यो आत्मो लगायो, काल फास जब गल परी सब पयो परायो, जान बूझ के बावरे ते काज बिगारे, पाप करत सुगत्यो नहीं न गर्भ निवारे, जे बिदगुर उपदेसया

अमीन। तेरा नाम है अदारा अरहाव करीमा रहीमा, अल्लाह तू गनी हाजरा हजूर दर पेश तू मनी, दरियाओ तू देहंद तू विशियार तू तनी, देह लेह एक तू दिगर को नहीं, तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी, नामे ते स्वामी बगसंद तू हरी, हल्ले यारा खुशखबरी, बाल बल जाओ हौ बल बल जाओ, नीकी तेरी बेगारी आले तेरा नाओ अरहाओ, कुजा आमत कुजा रवती कुजा मेरवी, द्वारका नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी।

तीर्थ मल मल नहाए, तेरा सदड़ा सुनीजे पाई, ये को भय अलाए, अरहाओ, जैसा बीजे सोलने, जो खट्टे सो खाए, अगय पुछ न हो गई, जे

करी जे को लए विकाए नानक कम ना आवई जिद तन नाही सच्चा नाव। सूही मोहल्ला पहला कार सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद जोग ना खिंता जोग ना डंड जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंदी मूड मुड़ा है जोग ना सिंगी वाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुगत एव पाई है गल्ली जोग ना होई एक दृष्ट कर समसर जाने जोगी कही है सोई रहाओ जोग ना बाहर मड़ी मसानी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना देद संतर पवे है जोग ना तीर्थ नाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुग तिव पाई है सतगुर भेटे ता सहसा टूटे धावत वरज रहाई है निजर चरे सह तुन लाग करगी परचा पाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुग तिव पाई है नानक जीव त्या अमर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाजो सिंगी वाजे तौ निरपहो पल पाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुगत तौ पाई।

तू आपे सर्व समाना रहाओ, मन तारा जी चित तुला, तेरी सेव सराब कमावा, घट ही भीतर सो सो तोली।

तोर लिख पाया पंच तत्कार तुध सिरट सब साजी कोई सेवा करहो जे किछ कीता होवे एक ना सतगुर मेल तू बुझावे एक मनमुख करे से रोवे हर की वड्याई हो आख ना साका हो मूर्ख मुगद नीचाण जन नानक तौहर बख्श लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवा कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाजी कर जैसे बाजी पाई नाना रूप तेर दिखलाई सांक

पाइए अंत न लइए मंत्र से चरणारे पावो दान ईठ होए मांगो मुख लागे संत रे नारे जन नानक कौ गुर कृपा तारी प्रभा देन हिस्तारे सूही महला पंजवा कार तीजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद।

जियो पिंड सब तुमरा माला, अमृत नाम चले जपनाला, नानक जाचे संतर वाला, सूही महला पंजवा, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, आपे थम्मे सच्चा सोई, हर हर नाम मेरा आधार, करण कारण

परमाया, जैसे पवन चुहलाया, सोन सुन ही डराया, कर रो त्रमराया, गरे अंध कूपाया, पावक सगराया, गई ओर साधाया, नानक हर त्याया, अब मैं पूरा पाया, राग सूही महला पंजवा, कार सेवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

अवधूता तेन पी अंत न पायो तेरा लाए थके विभूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सबल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन।

लायन हरसो लयन मिलाए सच्चा अमर सच्ची पातशाही सच्चे से तीराते सच्चा सुख सच्ची वड़ियाई जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी ठोवा हर जन के पीसण पीस कमावा नानक की प्रापास बेनंती तेरे जाना देखण पावा सूही महला पंजवा पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करणे हारा चरण तूड़ तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बरहारा मेरे राम राय ज्यों राखे त्यों रहिए तुद पावे ता नाम ज पावे सुख तेरा दिता लहिए रहाओ मुक्त भुगत जुत तेरी सेवा जिस तू आप कराए तहां बैकुंठ जय कीर्तन तेरा तू आपे सरदा लाए सिमर सिमर सिमर नाम जीवा तन मन होए निहला चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे सदगुर दीन दयाला कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया नानक कहो प्रापए कृपाला सदगुर पूरा पाया तू ही महला पंजवा तुद चित आए महा आनंदा जिस विसरह सो मर जाए दयाल होवे जिस ऊपर करते सो तुद सदा थे आए मेरे साहेब तू मैं मान ने माणी अरदास करी प्रभ अपने आगे सुन सुन जीवा तेरी बाणी अरहाओ चरण तूड़ तेरे जन की होवा तेरे दर्शन को बल जाई अमृत भजन दे उरतारी तो कृपा ते संग पाई अंतर की गात तुझ पैसारी तुझ जेवड़ अवर ना कोई जिसनू लाए लाए सो लागे भगत तुहारा सोई दोए कर जोड़ मांगो एक दाना साहेब तुठे पावा सास सास नानक आराध्य आठ पैर गुण गावा सूही महला पंजवा जिसके सिर ऊपर तू स्वामी तो दुख कैसा पावे बोल ना जाने माया।

तेरे सेवक कौ पौ किछ नाही, जाम नहीं आवे नेरे रहाओ, जो तेरे रंग रते स्वामी, इनका जन्म मरण दुख नस, तेरी बख्श न मेटे कोई, सतगुर का दिलासा, नाम ध्यान सुख पर पायन, आड़ पैर आराध है, तेरी शरण तेरे परवास है, पांच दुष्टले सद है, ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जेन कल राखी मेरी, सूखी महला पंजवा, सगल त्याग गुर सरणी आया, रखो रख नगारे, जित तू लाभ है, तित हम लाग, क्या ए जंत विचारे, मेरे राम जी तू प्रवेंतर जामी, कर कृपा गुरुदेव दयाला, गुण गावा नित स्वामी, अरहाओ आठ पैर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पोतरी है, आप त्या हुई है सब रेणा, जीवत्या इो मरिय, सफल जन्म जिसका जग पीतर, साध संग नव जापे, सगल मनोरथ तिसके पूर्ण, जे दया करे प्रवे आपे, दीन दयाल किरपाल प्रस्वामी, तेरी शरण दयाला, कर कृपा अपना नाम दीजे, नानक साधर वाला, राग सूही अष्टपदियां, महला पहला कर पहला, एक ओंकार, सदगुर प्रसाद सब अवगण, मैं गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई, ना मैं रूप ना बंके नैना, ना कुल ढंग ना मीठे बैना, अरहाओ सहसी कर कामण करे आवे, ता सुहागण जा कंते पावे, ना तिस रूप ना रेख्या काई, अंत ना साहेब सिमरिया जाई, तुरत मत ना ही चतुराई, कर कृपा प्रभ लाभ हो पाई, खरी सियाणी कंत न पाणी, माया लागी परम फुलाणी, हो मैं जाई ता कंत समाई, तो कामण प्यारे नव निध पाई, अनक जन्म बेशरत दुख पाया, कर गए लेहो प्रीतम प्रवराया, पंत नानक सौ है पी होसी, जय पावे प्यारा तय रावेसी, सूही महला पहला कर नावा, एक ओंकार, सदगुर प्रसाद कच्चा रंग कसुंभ का,

परमगत पाई पंच मिले सोहाया गया क्रोध ममता तननाठी पाखंड परम गवाया हौमे तीर गई सुख पाया आरोगत पय शरीरा गुरप्रसादी ब्रह्म पछाता नानक गुणी गहीरा मनमुख विछड़ी दूर महल ना पाए बल गई बलराम जियो अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे वेण सतगुर मगना पाया उजड़ पंथ प्रमे गावारी खिन खिन तक्के खाया आपे दया करे प्रवदाता सतगुर पुरख मिलाए जन्म जन्म के बिछड़े जन्म मेले नानक सहज सुभाए आया लगन गणाए हिरदे तन ओ माहिया बलराम जीओ पंडित पांदे आन पत्ती बै वाचाइया बलराम जीओ पत्ती वाचाई मन वजी वधाई जब साजन सुने कर आए गुणी ज्ञानी बै मता पकाया फेरे तत दिवाए वर पाया पुरख अगम अगोचर सद नवतन बाल

नदर प्रभु सत्संग हार मंगल रस रसन रसाय नारक नाम परगासा अंतरतन विचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कर चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प सिगार बनाए हर प्रसवते पाया जो प्रभु कहे सोई पर कीजे नानक अंक समाया हर प्रभु काज रचाया गुरमुख वियाहने आया वियाहने आया गुरमुख अर पाया सातन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाए हर जीव आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिल आए अपूर्व जंज बनाई नानक प्रपाया मैं सचा ना कदे मरे ना जाई राग सूगी शंत महला चौथा कार तीजा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद आवो संत जनो गुण गावे गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है कर वाजे शब्द कन्हेरे राम शब्द कन्हेरे घर प्रतेरे तू करता सब ताई आयन जपी सदा सारागी साज शब्द लिवलाई अनदिन सहज रहे रंग राता राम नावृद पूजा नानक गुरमुख एक पछाणे अवर ना जाने दूजा सब में रव रहया हो प्रवेंत्र जमी राम गुर शब्द रवे रव रहया हो प्रमेरा स्वामी राम प्रमेरा स्वामी अंतर जमी कट कट रव्या सोई गुरमत सच पाईए सह सुमाईए तिस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावा जे प्रभावा आपे लय मिलाए नानक सो

अब वैसी गर्भ को मानो नेचल हब जाना मिथिया माना संत प्रभु होए दासा जीवत मरिगे पौजल तरिए जे थीवे कर्म लिख आसा गुर से बीजे अमृत पीजे जिस लावे सहज त्यानो नानक शरण पया कर द्वार हाउ बल बल सद कुरबानो सुन बावरे मत जाने प्रभ मैं पाया सुन बावरे थियो रेण जिनी प्रवत्याया जिन प्रवत्याया तिन सुख पाया वड़भागी दर्शन पाईए थियो निमाना सद कुरबाना सगला आप मिटाइए ओ तन भाग सुद्धा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पे आप वेचाया नानक दीन शरण सुख सागर रागलाज अपनाया सूखी महला पंजवा हार चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुस कै बलराम जियो हर अमृत परे भंडार सब किस गए कार तिस कै बलराम जियो बाबल में रावण समरथा करण कारण प्रभारा जिस सिमरत दुख कोई ना लागे औजल पार उतारा आद जुगाद भगतन का राखा उस्तुत कर कर जीवा नानक नाम महारस।

एक सो सदा सद जीवई बलराम जियो, तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सिरजनहारा, जिते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रैन आस तुम्हारी, सबल दर्श पेटिया गुरपूरा, नानक सद बलिहारी। समलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जीओ, सदगुर मिलिया दयाल,

की शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभ कौ बलिहार नानक सतगुरु बाणा ऐसा गुरवड भागी पाई है जित मिले प्रभ जापे राम जन्म जन्म के किलबिख उत्तर है हर संत धूड़ी नित नापे राम हर धूड़ी नाइए प्रभु ते आई है।

हर गुण दे हर संतन के वसे आए राम। संत चरण गुर सेवा लागे तिनी परम पद पाए राम। परम पद पाया आप मिटाया हर पूर्ण कृपा तारी। सफल जन्म हुआ पो भागा हर पेटिया एक मो

जपिए मिल सदगुरु सुख पाया। गाओ मंगलो नित हर जनो उन्नी इच्छ सुबाई राम। रंग रते अपने स्वामी सेती मरे न आवे जाई राम। अवनासी पाया नाम त्याया सगल मनोरथ पाए। सांत सहज आनंद कनेरे गुर चरणी मन लाए। पूर रहया काट काट अवनासी थान तनंतर साई। को नानक कार्ज सगले पूरे गुर चरणी मन लाई। सूही महला पंजवां कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी।

गुरमुखे सदकरणी सारी बिनसे प्रम पे झूठा राम अनहद बाणी गुरमुख वखाणी जस सुन सुन मन तन हरिया सर्व सुखा तिस ही बने आए जो प्रभ अपना करया कर्म नवनिध परे भंडारा।

गुण गोपाल गाओ नित सखी हो, सगल मनोरथ पाए राम। सबल जन्म होआ मिल साधु, एक अंकार त्याए राम। जप एक प्रभु अनेक रव्या, सर्व मंडल छाया। ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया, सा ब्रह्म दृष्टि आया। जल थल महियल पूर पूरन, तिस बिना नहीं जाए। देख दर्शन नानक बिसे, आप लए मिलाए। सूही महला पंजवां, आप चल नगर गोविंद गुरु का। नाम जपत सुख पाया राम। मन इच्छे से ही फल पाए, तरते आप वसाया राम। तरते आप वसाया सर्व सुख पाया, उत पाई सिख बेगासे। गुण गावे पूर्ण परमेसर, कार्ज आया रस। प्रभ आप स्वामी आपे रखा, आप पिता आप माया। कहो नानक सतगुर बलिहारी, जिन इहो थान सुहाया। कर मंदर हटनाले सोहे, जिस च नाम निवासी राम। संत भगत हर नाम आराध, कटिए जमकी फासी राम। काटी जम फासी प्रभ अवनासी, हर हर नाम तिहाए। सगल समग्री पूर्ण होई, मन इच्छे फल पाए। संत सज्जन सुख माने रलियां, दुख दर्द प्रमनासी। शब्द सुहारे सदगुर पूरे, नानक सदबल जासी। दात खसम की पूरी होई, नित नित चढ़े सवाई राम।

सच रते से निर्मले होमे तज विकारा, जिस तू मिले सो तुद मिले सो ईस त्यारा। श्लोक महला तीजा, सूविगे सूहा सब संसार है, जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में झूठ सा बिरस जाए। ज्यो टेके ना बिरख की छाओ, गुरमुख लालो लाल है जो रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सगत सिवे कर आई, मन वसया हर अमृत नाओ। नानक बलिहारी गुर अपने, जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा, सूहा रंग विकार है तंतन पाया जाए। इस लेंदे बिलम न हो वई, रंड बैठी दूजे पाए। मुंद एयानी दुमनी सूहे वेस लुभाए। शब्द सच्चे रंग लाल कर, पाए पाए सीगार बनाए। नानक सदा सुहागणी, जे चलन सतगुर पाए पौड़ी। आपे आप्यो पायन आप कीमत पाई, सीधा अंत न जापई गुर शब्द बुझाई। माया मोह गुबार है,

पौड़ी सच्चा अमर चलायून कर सतपुरमान सदा निचल रब रहा सो पुरख सुजान गुरप्रसादी सेविए सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान आगम अगोचर अलख है गुरमखर जान श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका पीतर तरिया आन खोटे खरे परखियन साहिब कै दीवान महला पहला नावन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर एक भाव लथी नात्या दोए पा चढ़िए सहोर बार तोती तूमड़ी अंदर विस निकोर साध पले अणनात्या चोर से चोरा चोर पौड़ी आप युगम चलाएगा जगतंदे लाया एक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया दैत तो मन तामदा गुर ठाक रखाया नावे नू सब लोच दी गुरमती पाया तुर लिखया मेट न सकी है जो हर लिख पाया श्लोक महला पहला दोए दीवे चौदे हट नाले जेते जीते ते वणजारे खुले हट होआ व्यापार जो पहुंचे सो चलन हार धर्म दलाल पाए निशान नानक नाम लहा परवान कर आए वजी वाधाई सच नाम की मिली वड्याई महला पहला राती होवन कालियां सुपेदा सेवन द्यो बग्गा तपे कणा कालिया काले वन अंधे अगली बारे मूर्ख अंध ज्ञान नानक नदरी बारे तबे न पावे मान पौड़ी काया कोट रिताय हर सच्चे आपे एक दूजे पाए खुवायन हौमे विच व्यापे इहो मानस जन्म दुलंब सा मनमुख संतापे जिस आप बुझाए सो बुझसी जिस सतगुर थापे सब जग खेल अरचायून।

एक दाते एक मंगते, नाम तेरा प्रवान, नाग जिन्नी सुनके मनिया, हों तिना मिट्टों कुर्बान पौड़ी, माया मोह सब कूड़ गए, कूड़ो होए गया, हमें झगड़ा पाए ऊन, झगड़े जग मोया, गुरमुख झगड़ चुकाए ऊन, इको रब रहया, तवे आत्म राम पछाणिया, भौजल तर गया, जोत सुमाणी जोत विच, हर नाम समया, महला पहला, सदगुर भीखिया दे मैं, तू समरथ दा तार, होमे गर्भ निवारिए, काम क्रोध अहंकार, लब लोभ पर जालिए, नाम मिले आधार, अहिंस नवतन निर्मला, मैला कभू ना होए, नानक ए बद छुट्टी है, नदर तेरी सुख होए, महला पहला, इको कंत सबाइया,

गुर कै शब्द सलाई है, हर नाम समावे, सदगुर सेवा सफल है, सेवे फल पावे। श्लोक महला दूज, किस ही कोई कोए, मन निमाणी एक तू, क्यों ना मरीजे रोए। जा लग चेतन आव ही महला दूज, जा सुगता सौ रावेओ, दुख पी समालेओ। नानक कैसे आणिए, क्यों कंत मिलावा होए पौड़ी। हों क्या सारा ही किरम जंत, वड्डी तेरी वड्याई। तू अगम दयाल अगम है, आप लय मिलाई। मैं तुझ बिन बेली को नहीं, तू अंत सुखाई। जो तेरी शरणागति, तिन लय छिड़ाई।

तथा सबना भगता की कबीर के एक ओंकार सदगुर प्रसाद अवतर आए कहां तुम कीना राम को नाम न कबहू लीना राम ना जप हो कमर मत लागे मर जै बे कहो क्या करो अपागे रखाओ दोसु करके कुटुंब जीवाया मरती बार एक सर दुख पाया।

पाई, अचिंत नाम बसया मन आई, होमे माया शब्द जलाई, दर सच गुरते सोभा पाई, जगदीश सेवो में अवर ना काजा, अन दिन अंत होवे मन मेरा, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ, मन की प्रतीत मन ते पाई, पूरे गुरते शब्द बुझाई, जीवन मरण को समसर वेख, बौड़ ना मरे ना जम पिख, कर ही मैं सब कोट निधान, सदगुर दिखाए गया अभिमान, सदगी लागा सहज ध्यान, अन दिन गावे एको नाम, इस जुग में वड्याई पाई, पूरे गुरते नाम ते आई, जय देखा तै रहा समाई, सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई, पूरे पाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निधान दिखाया, गुर का शब्द अत मीठा लाया, नानक त्रिशन बुझी मन तन सुख पाया, अराग बलावल महला चौथा, कार तीजा एक ओंकार, सदगुर प्रसाद उद्यम मत प्रभ अंतर जामी, ज्यों प्रेरे त्यों करना, ज्यो नटुआ तंत वजाए तंती, त्यों वाजे जंत जना, जप मन आराम नाम रसना, मस्तक लिखत लिखे गुर पाया, हर हिरदे हर बसना रहाओ, माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी, रख ले वो जने अपना, ज्यों प्रहलाद हरनास ग्रस्यो, हर रख्यो हर सरना, कामन कमन की गात मित कहिए, हर की गे पतत पवन्ना, ओ टोवे टोर हाथ चमचमरे, हार उतरे ओ परे ओ सरना, प्रभ दीन दयाल भगत पवतारन, हम पापी राख पपना, हर दासन दास दास हम करियो, जन नानक दास दासन्ना, बलावल महला चौथा, हम मूर्ख मुग्ध अज्ञानमती, शरणागत पुरख अजन्मा, कर कृपा रख ले।

जे बात होवे नहीं, अपना भला सब कोई बांछ सो करे, जे मेरे चितना चितैनी, मन की मत त्यागो हरजन, एहा पात कठैनी, आन दिन हर हर नाम त्यावो, गुर सतगुर की मत लैनी, मत सुमत तेरे वस स्वामी, हम जंत तू पुरख जनतैनी, जन नानक के प्रभ करते स्वामी, ज्यों पावे तिवे बोलैनी।

मुए अनाथ तुमरी शरणाई, कर कृपा कर चरण तिहाई। दया करो बसो मन आए, मुए निर्गुण लीजे लड़ला इरगाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जा पीड़। सर्ब दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मंतन आधार, विस्तृत नाम होवत तनसार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर विसरत सब काम होता। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत। मन तन अंतर हर हर मंत्र।

आप ही पुजारी, आप ही देवा, आपे जोग, आप ही जूता, नाग के प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल मोहल्ला पंजवा, आप उपावन, आप सधरना, आप करामन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभो आप ही जरना, अरगाओ आप ही मस्त, आप ही बोलना, आप ही अशलना जाई शलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही काट काट आप अलिपना, आपे अवगत आप संगरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल मोहल्ला पंजवा, फूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरवड़ भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। रघाव काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म।

जो निंद करे इन ग्रहण की, इस आगे ही मारे करतार। नानक दास ता की शरणाई, जा को शब्द अखंड अपार।

आप प्रभु सब करे कराया, पद पुनीत कणे करे ठाकुर बिरदाया, मद कूलो मान उखजान माया परमाया, नानक तिस पत राखसी जो प्रप है राया, बिलावल मोहल्ला पंजवा माटी तेजन साजया, कर दुर्लभ देखे आनक शिदर मन में टके निर्मल दृष्टे, क्यों बिस्तरे प्रा मने ते जिसके गुण एह, प्राप तज रचे जे आन सो सो रलिगे खेहे रघाओ, सिमरो सिमरो सास सास मत बिलम करेह, छोड़ प्रपंच प्रसुमरचो तज कूड़े नेह, जिन अनक एक बहु रंग किए है होसी एह, कर सेवा तस पार ब्रह्म गुरते मत लेह, ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरनेह, दास दास को दासरा नानक कर लेह, बिलावल मोहल्ला पंजवा एक टेक गोविंद की त्यागी अन आस, सब ऊपर सुमरथ प्रभ पूर्ण गुणतास, जनका नाम आधार है प्रसरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे रखाओ, आप रखे आप देवसी आपे प्रतपारे, दीन दयाल कृपा निधे सास सास संहारे, करणहार जो कर रहा साई वड्याई, गुर पूरे उपदेसे आ सुख खसम रजाई, चिंत अंदेसा गणत ताज जन हुकुम पछाता, न मिलसे न छोड़ जाए,

मान खुड हर तेरा नहीं विसास, तू मां उदमादा खर का पैखर तौ छुटे जो ऊपर लादा रखाओ। जब तब संयम तुम खंडे जम के दुख डांड, सिमरे ना ही जोन दुख निर्लजे पांड। हर संग सहाई महामीत तिस्यों तेरा भेद, बीदा पंच बटवाराई उपजो महाखेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना, तान तन सर्व से अपना प्रभ जन को दीना। बलाबल महला अपनवा उदम करत आनंद पया, सिमरत सुखसार जप जप नाम गोविंद का पूर्ण विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा रघाओ। जी जंत सब सुख बसे सब के मन लोच, पर उपकार नित चितवते नाही कजपोच। तन सो थान बसंत तन जय जपिए नाम, कथा कीर्तन हर अत कना सुख सहज विश्राम। मन ते कदे ना विसरे अनाथ को नाथ, नानक प्रभु शरणागति जाके सब किस घात। बिलावल महला पंजवा जिन तू बंद कर छोड़या पुर सुखमय पाया, सदा सिमर चरणार बिंद शीतल होताया। जीव त्या अथवा मोया किस काम न आवे, जिन इव रचन रचाया को तेज्यो रंग लावे रखाओ। रे प्राणी उसन सीत करता करे, काम ते काढ़े कीरी ते हस्ती करे। तू टाले गंडे अंडज जेरज सेत उत्पुज, प्रभ की एक किरत किरत कमावन सर्व फल। रब गे हर निरत हम ते कछु ना होवना शरण प्रसाद, मोह मगन कूब अंध ते नानक गुर काढ। बिलावल महला पंजवा खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बनतान, अश अशेर अभेद प्राव ऐसे भगवान। ताब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग, जागन ते सुबना भला बसिए प्रसंग। रखाओ वर्ण आश्रम सत्र सुनो दर्शन की प्यास, रूप ना रेख ना पंच तत् ठाकुर अविनाश। ओ स्वरूप संतन कहे विरले जोगीसर, कर कृपा जा को मिले

अपनाया। सेमर सेमर मन तन सुखी नाट निरपया बिलावल मुहला पंजवा कर तर मस्तक थापया नाम दी नोदान सबल सेवा पार ब्रह्म की ताकि नहीं हान आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन जो जो चितवे साध जान जो लेता मान रखाओ शरण परे चरणारविंद जन प्रभु के प्राण सहज सुभाए नानक मिले ज्योति जोत समान बलावल मुहला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनू प्रभ आप प्रभ शरणागत जन परे ताका सद प्रताप राखनहार अपार प्रभ ताकि निर्मल सेव राम राज रामदास पुर इन्हें गुरदेव रखाओ सदा सदा घर त्याई है किस विघन न लागे नानक नाम सलाई है पैद सुमन पागे बिलावल मुहला पंजवा मन तन प्रभ आराधिये मिल साध समागे उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम पागे राम नाम जो जन जपै आन दिन सद जागै तंत मंत नै जो होई तित चाख न लागै रहाओ काम क्रोध मद मान मोह

मर मर जन्मे जिन बिसरिया, जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेविया, आन दिन रंग राता तांत सहज आनंद करा, पूर्ण पैयास सुख पाया अगर साध संग, सिमरत गुणतास रखा तुण स्वामी अरदास जान, तोमी अंतर जामी फानतन अंतर रब रहे, नानक के स्वामी।

रोग मिटाए जीवालयन, जा कावड़ प्रताप दोख हमारे बख्शेन। अपनी कल तारी मन बांझत फल दितेन, नानक बलिहारी राग बिलावल। महला पंजवां, चौपदे दो पदे कर छेवां, एक ओंकार। सतगुर प्रसाद मेरे मोहन, श्रवनी ए ना सुनाए। साकत गीत नाद तुंगाव, बोलत बोल अजाए रहाओ। सेवत सेव सेव साध सेवो, सदा करो किरताए। अपय दान पावो पुरख दाते, मिल संगत हर गुण गाए। रसना अघ अघ गुण राती,

खोए खोए खोई हो मोको सतगुर मंत्र दरड़ाए। अतुल अतुल अतुल न तुलिए भगत वशल कृपाए। जो

पावे केहत सुनत सदा संग हरे रखाओ। काज भ्याजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग करे। होमन कौरा अनहोमन मीठा दिखिया मैं लपटाए जरे।

दयाल स्वामी सर्वस संत जना तनमाल नानक जाचक दर्श प्रामंग है संत जना की मिले रवाल बिलावल मोहल्ला पंजवां सिमरत नाम कूड़ जतन पए साध

बनायो आप अपने सेव की आपे रख ब्रह्म मेरे को वड प्रताप पार ब्रह्म परमेश्वर सदगुर वस कीने जिन सगले जंत चरण कमल नानक शरणाई आराम नाम जप निर्मल मंत्र।

मूला नसो प्रीत बनी अरहाओ तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माहे बस्त है तू कर कृपा प्रवे अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को अकथ कथा जा की बात सुनी जन नानक दासन दास कहित है मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी बिलावल महला पंजवा हर के चरण जप जाओ कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताका हिरदे तर मन ध्यान रखाओ सिमर सिमर सिमर सुखदाता जाका किया सगल जहान रसना रबो एक नारायण ताची दरगे पावो मान साधु संग प्राप्त जाको तिन्ही पाया इहो निधान गावो गुण कीर्त नित स्वामी कर कृपा नानक दीजे दान बिलावल महला पंजवा राख लिगे सतगुर की शरण जय जयकार हो आज अंतर पार ब्रह्म तेरो तारण तरण रखाओ विश्वम पर पूर्ण सुखदत्त सगल समग्री पोखण परण थान सनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करण आद जुगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरण।

दूत दुट सब होए खया। गुण अवगुण प्रकश ना बिचारे हो, कर कृपा अपना कर लया। अतुल बड़ाई अचुत अबनासी, नान कुचरे हर की जया। बिलावल मोहल्ला पनवा, बिन पय भगती तरन कैसे। करो अनुग्रोपत उदाहरण, राग स्वामी आप परोसे रघाव। सिमर नहीं आवत फिरत मदमावत, दिख्या राता स्वान जैसे। औद विहावत अदक मुहावत, पाप कुमावत बुढ़े ऐसे। शरण दुख पंजन पुरख नरंजन, साधु संग तरमन जैसे। केशव कलेश नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे।

आपे मेल लए, जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। ताज अवमान अरचिंत बैरानी साधे शरण पए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तांते रोग खय। महामुद अजान अज्ञानी रखे थार दए, कहो नानक गुरपुरा फिट्यो आमन जान रहे। बिलावल मोहल्ला पंजवा, जीवो नाम सुनी जो सो प्रसन्न पए गुरपुरे, ता मेरी आस पुन्नी रखाओ। पीर गई बंदी मन तीरा मोयो अंध तुनी, उबजो चाओ मिलन प्रीतम रहे ना जाए खिनी। अनक भगत अनक जन तारे तिमरे अनक मुनि, अंधले टेक नेर थन थन पायो। प्रव नानक अनक गुनी, राग बिलावल महला पंजवा कर तेरवा पड़ताल।

रूप त्याभो नानक द्वारे आयो तौ मैं लालन पायोरी। मोहन रूप दिखावे आमोई नींद सुहावे ता मेरी तिखा बुझानी आव मैं सहज सुमानी मीठी तरह कहानी। मोहन लालन पायोरी अरहाओ दूजा बिलावन महला पंजवा मोरी अंग जाए दर्शन पावत हे राचो नाथ की सहाई संतना आव चरण गहे रहाओ आहे मन अवरना भावे चरणावे चरणावे। उलझ्यो आलम करंद कमल ज्यो आनस नहीं चाहे एके हर लाहे अन ते टूटीए रिख ते छूटीए मान हरस कूटीए संग साधु उल्टीए अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण हे। राग बिलावल महला नावा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुखरता हर नाम पछानो अजामल गण का जे सिमरत मुक्त पय जी जानो। रघाव गज की त्रास मिट्टी छिन्हू मैं जग ही राम बखानो नारद कैत सुंदर बारक भजन माए लबटानो अचल अमर निरपय पद पायो जगत जाए हैरानो। नानक कहत भगत रशक हर निकट तहे तुम मानो बिलावल महला नामा हर के नाम बिना दुख पावे भगत बिना सहसा न चूके गुर ए पेद बतावे। रघाव कहां पयो तीर्थ व्रत किए आराम सर नहीं आवे जोग जग निफल ते मानो जो प्रजस बसरावे।